एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके

0: बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए, जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय श्रोताओं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, पहले देश फिर हम। आइए करें नमन वंदन अपनी मातृभूमि का, इस भारत भूमि का। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत समुस्वरों में देश वंदना के साथ।

समूह स्वरों में देश वंदन के पश्चात आइए करते हैं आराधना ईश्वर की। प्रस्तुत है हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

0: ओम व्यास और साथियों के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। खेती की बात में आई श्रोताओं सुनते हैं ये सामयिक सुझाव। विषय है मिर्च की प्रमुख बीमारियां एवं उनका समयोचित प्रबंधन। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज जानबो मिर्चा फसल के प्रमुख बीमारी और ओखर समेकित प्रबंधन। मिर्चा के बात करी तो मिर्चा विश्व के प्रमुख मसाला और साग फसल मन में एक है। भारत मिर्चा के सबले बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है, जोन विश्व भर के कुल उत्पादन में लगभग 40% के योगदान देते। बहुत जी किसान भाई मन मिर्चा के फसल लगाते हैं और बढ़िया ढंग से लाभ पाते, काबर मिर्चा के जिन रेट है कभू नहीं गिरे। तो आज बात करबो कौन कौन सा प्रमुख बीमारी है और खर कौन ढंग से हमन समेकित प्रबंधन करी। सबले पहली बात करी तो पौध गलन, जोन हर फसल के मुख्य बीमारी है। पौध गलन के समस्या मिर्चा के नर्सरी में पाए जाए वाले एक गंभीर माटी जनित रोग है, जौन पौधा के प्रारंभिक अवस्था में ही ओला नष्ट कर देते। ये रोग की बात करें मुख्यतः मृदा जनित फफूंद जैसे पाइथियम, फाइटोप्थोरा और राइजोक्टोनिया सोलानिक कारण होते। ये रोग बीज और माटी के माध्यम से फैलते और अंकुरित पौधा ला तेजी से प्रभावित करते। लक्षण की बात करी बीजा अंकुरित नहीं हुए या अंकुरण के बाद सर जते, छोटे जन पौधा रही थे वो माटी के सतह के तीर से ही पातर होके गिर जते, पौधा के तना मुलायम होके गल जते। प्रबंधन की बात करी सबले पहली होते भाई बीजोपचार। बुआई से 24 घंटा पहली बीज ल ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना है या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना है। अगर हम रासायनिक व्यवस्था कति जात हैं तो थीरम या कैप्टान 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना है। दूसर रोग के बात करी एंथ्रोक्नोज, जिला धब्बा रोग और फल सड़न कहे जाते हैं। एंथ्रोक्नोज मिर्चा के एक प्रमुख फफूंद जनिक रोग है, जो उन पौधा के वृद्धि, फूल बने के प्रक्रिया और फल के गुणवत्ता ला प्रभावित करते। ये रोग मुख्यतः कोमल टहनी, फूल और फल में आक्रमण करते, जेखर से उपज और बाजार मूल्य दोनों में कमी आ जाते। लक्षण के बात करी कोमल टहनी मन के ऊपरी भाग सूख जाते, जिला डाई बैक कहे जाते। फूल आए के अवस्था में एकर संक्रमण शुरू होते, संक्रमित फूल सूख के गिर जाते, फूल के डंठल सिकुड़ के सूख जाते। जिन फर होते मिर्चा के फल ओमा धसे हुए करिया करिया चकता कस धब्बा बन जाते, जेखर से फल हा सरे लगते। रोग प्रबंधन के बात करी बीज ला हमन ला स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के उपयोग करना है। बीज के उपचार जरूरी है, आप जैविक उपचार करा चाहे आप मन रासायनिक उपचार करा। रासायनिक नियंत्रण की बात करी मेटालेक्सिकल और मैंकोजेब 8% और 64 WP 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाना है। लगभग 3 से 4 लीटर घोल प्रति वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र में ड्रेंचिंग करना है या कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब मिश्रित फफूंद नाशक ला 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना है। छिड़काव के समय की बात करी पहली छिड़काव फूल आए के समय, दूसरा छिड़काव फल बने के अवस्था में, तीसरा छिड़काव 15 दिन बाद। नर्सरी प्रबंधन की बात करबो तो नर्सरी में पानी के जमाव नहीं होए देना है, ज्यादा घना बुआई से बचना है। नर्सरी घाम जहां धूप बढ़िया ढंग से पड़त है वो स्थान में तैयार करना है। संतुलित सिंचाई करना है, ज्यादा नमी रोग ला बढ़ाते, उपचारित और प्रमाणित बीज के ही उपयोग करना है। किसान भाई हो, तीसरा मुख्य रोग की बात करें मिर्चा के मुरझन मतलब उकटा रोग। मिर्चा के उकटा रोग एक गंभीर मृदा जनिक रोग है, जौन हा फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फफूंद के कारण होते। ये रोग पौधा के जड़ और संवहनी उतक ला प्रभावित करते, जेखर से पौधा धीरे धीरे मुरझा के सूख जाते। पहचान के बात करी पौधा के मुरझाना ये रोग के प्रमुख लक्षण है। पत्ती मन ऊपर कति मुड़ के अंदर तरफ लुढ़क जाते, पत्ती मन पिवरा होके सूख जाते, खेत के कुछ स्थान में ज्यादा पौधा एक संग सूख जाते, तना और जड़ मन के अंदर संवहनी के भाग भूरा हो जाते। रोग प्रबंधन के बात करी रोग प्रतिरोधी किस्म मन के चयन करना है। बीज उपचार हमला ट्राइकोडर्मा विरडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से करना है। बायोफंगिसाइड के उपयोग हमला करना चाहिए, जौन माटी में मौजूद हानिकारक फफूंद जैसे फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पिफिथियम ये सब बल्ला

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: तुलसीकृत श्री रामचरितमानस गायन का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और साथी संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आयु श्रोताओं, अब सुनते हैं चिंतन। विषय है कर्म प्रधान है। आलेख सुश्री निर्मला बिहार का है।
1: कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व में व्यक्ति या व्यक्ति समूह कर्म तो करता है, मगर उसे कभी सफलता मिलती है और कभी नहीं मिलती। असफल रहने पर वो निराश हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो असफल क्यों हुआ। विद्वानों ने अनेक प्रसंगों पर सिद्ध किया है कि असफलता का अर्थ उद्योग में कुछ कमी रह जाना होता है। मगर व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता हुआ भाग्य पर रोने लगता है। बाह्य परिस्थितियों को असफलता के लिए दोषी ठहराकर कबूतर जैसे आंख मिचकर यथार्थ को झुठलाने का प्रयास करता है। सीता जी को खोज में बानर समूह अंगद के नेतृत्व में निकला था। अंगद के साथ खोज करते असफल होते बानर समूह जब निराश होने लगा, तब एक योग्य सेनानायक की भांति अंगद ने अपने प्रमुख साथियों को एकत्रित किया और उनकी निराशा दूर करते हुए समझाया। साथी वानरों का आह्वान करते हुए कहा कि यदि आप सफलता की कामना करते हैं तो आपको निरंतर उत्साहित रहना होगा। थोड़ी कठिनाई आने पर घबराना नहीं चाहिए। निरंतर उत्साह बनाए रखना सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके पश्चात अंगद ने कहा कि निरंतर उत्साह के साथ चातुर्य और मानसिक शक्ति को धारण करना आवश्यक है। श्रम और उत्साह के साथ कार्य हो, मगर चातुर्य और मानसिक शक्ति भी लगानी होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों का प्रयोग सफलता के लिए आवश्यक है। वानर समूह को अंगद ने अपनी भाषण कला के माध्यम से सीता के खोज कार्य में लगाया और उनकी निराशा दूर की। यथार्थ जीवन में हम ये पाते हैं कि निरंतर सतत उत्साहित रहकर कठिन कार्य को सहज बनाया जा सकता है। सफलता के जो सूत्र अंगद ने बताए उसे अन्य महापुरुषों ने भी अपने अपने ढंग से व्याख्यायित किया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने समझाया है, सफलता असफलता और असफलता पाने के बावजूद उत्साह खोए बिना कार्य करते रहने से ही मिलती है। सफलता के मार्ग पर असफलताएं तो मिलती रहती हैं, मगर प्राप्त असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता कुछ सीख देती है और सफलता के निकट लाती है। असफल होने पर निराश नहीं होना है। असफल होने के भय का त्याग सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्मरण रखें कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे असफलता प्राप्त अनेक वर्ष होते ही हैं।
0: कर्म प्रधान है, इस विषय पर चिंतन का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। आलेख सुश्री निर्मला बिहार का था।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय

0: संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप।
1: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आई श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।
2: 30% छूट अभी भी चल रही है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुनिए सुबह 8:30 पर और 9 बजे सुना जा सकेगा कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम रायपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम अमराई में आज हम आपको सुनवाएंगे जी डी मानिकपुरी, गंगाराम सहारे, दयाराम ओगरे और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। समय होगा दिन में 10 बजे से। सदाबहार नगमे फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आनंद लिया जा सकेगा सुबह 7:30 पर और नए तराने हम लेकर आएंगे 10:30 से। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अपने दैनिक समय 7:05 पर होगा। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है शाम 5 बजे। प्रायोजक होंगे CF वन विभाग सरगुजा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ग्राम सभा सुनेंगे शाम 7:20 पर। किसानवाणी कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता। इसमें उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व की जानकारी देंगी उद्यान विस्तार अधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह सेंगर। भेंटकर्ता होंगे महंगू भैया। साथ ही मंडी मौसम की जानकारी, सामयिक सुझाव भी साझा करेंगे। समय होगा शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे तक।

सुगम संगीत में आज रात 8 बजे सुनिए गायक कलाकार गुलाम अली के गाए कुछ गैर फिल्मी नगमों को। चित्रपट संगीत का आनंद लिया जा सकेगा शाम 5:05 से। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हम लेकर आएंगे शाम 5:35 पर, संध्या 6:20 पर और संध्या 7 बजे से भी। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनेंगे रात 8:15 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और ठीक 7 बजे हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने के लिए अनुमति जारी कर दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों की लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। यह सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। राज्य में आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: संस्कृत और हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, घर में, परिवार में, दफ्तर में, कहीं भी कोई आयोजन होना हो तो हम सब तैयारियों में जुट जाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कितने मेहमान, नातेदार, मित्र आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे रहेंगे, बुजुर्ग बीमार भी रहेंगे क्या, फिर मौसम कहेगा, इन्हीं जानकारियों के हिसाब से ही हम तैयारियां करते हैं और कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे पाते हैं। श्रोताओं, कुछ इसी तरह की प्रक्रिया समूचे देश में बृहद रूप से, चरणबद्ध रूप से आरंभ हो चुकी है। आप समझ गए हैं, हम बातें कर रहे हैं जनगणना की। जनगणना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में स्वगणना की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक थी। यदि आपने स्वगणना कर लिया है, ऑनलाइन नंबर को संभाल कर रखें, और यदि स्वगणना नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जनगणना के लिए प्रशिक्षित कर्मी घर पर आएंगे और ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। श्रोताओं, ध्यान रहे कि जनगणना कर्मी कोई भी पासबुक, ओटीपी या कोई दस्तावेज नहीं मांगेंगे। वे मुख्य रूप से परिवार मुखिया का नाम, सदस्यों की संख्या, भवन का प्रकार, शौचालय, पेयजल, ईंधन के उपयोग, कच्चे पक्के घर, इस तरह की जानकारियां पूछेंगे और ऑनलाइन आपके सामने ही फॉर्म भरेंगे। सभी जानकारियां गोपनीय हैं और इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। इसलिए मित्रों, सही और सटीक जानकारियां दें ताकि देश के भविष्य निर्माण के लिए ठोस नीतियां बन सके। श्रोताओं, हम बताएं कि इस साल यानी सन 2027 के लिए जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रसिद्ध रेत कलाकार यानी कि सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को, और जनगणना के लिए थीम बना है जन भागीदारी से जन कल्याण। मित्रों, आप जान ही रहे होंगे कि भारत में पहली बार गणना 1872 में लॉर्ड मैकाले के काल में हुई थी, लेकिन पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई और स्वतंत्रता बाद 8वीं जनगणना है। और इस तरह से अभी तक 2027 की इस जनगणना को नाम दिया गया है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। भारत सरकार के जनगणना कार्य में आप सभी का, हम सभी का सहयोग अपेक्षित है।

0: आज सुबह।
1: सुबह का सूरज आ चुका है, एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा लेकर। हर एक सुबह अवसर देता है खुशियों को गले लगाने का, अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने का और जीवन को खूबसूरत बनाने का। इस चमकती सुबह में स्वागत और अभिनंदन हमारे सभी सुधी श्रोताओं का। कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपके साथ हूं मैं, महावीर बरगाह। कीजिए स्वीकार, नमस्कार।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, आज की तारीख यानी 2 मई एक प्रख्यात भारतीय कलाकार की जन्म तारीख है, जिन्होंने विदेशों में भी अपना परचम लहराया। वे पर सर्वोत्तम निर्देशक, साहित्यकार, पटकथा लेखक, अभिनेता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनके पुरस्कारों और सम्मान की चर्चा करें तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, और 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी शामिल हैं। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सत्यजीत रॉय की। 2 मई 1929 में इनका जन्म हुआ था। सत्यजीत रॉय ने लंदन में इटालियन फिल्म लाद्री दी बिसिक्लेन, यानी इसका अर्थ है कि बाइसिकल चोर, इस फिल्म को देखी, और इस फिल्म को देखने के बाद इनका रुझान फिल्मों के निर्देशन की तरफ हुआ। सत्यजीत रॉय ने 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल हैं। इनकी फिल्म पाथेर पंचाली को कान फिल्म उत्सव में मिले सर्वोत्तम माननीय प्रलेख पुरस्कार सहित 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और करते हैं नमन। और अब कार्यक्रम आसवा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर।
2: यातायात संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को उमा शंकर पांडे का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बिलासपुर जिले के लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी संक्षिप्त प्रवास पर बिलासपुर पधार रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज दोपहर बाद 3:50 पर SECL हेलीपैड सरकंडा हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहां से आप बतराई स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट 2026 में शामिल होंगे। तत्पश्चात आप यहां से पुनः SECL हेलीपैड सरकंडा आएंगे एवं हेलीकॉप्टर से शाम 4:55 पर गंतव्य हेतु प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रवास के समय सुगम और सुरक्षित यातायात के आशय से आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। अतः आप सभी से अनुरोध है, इस समय आप अन्य वैकल्पिक मार्ग से आना जाना कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में, जिले के हर ग्राम, हर कस्बे में, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़कों में कभी दो वाहन आपस में टकरा गए, या आपस में दोनों वाहन रगड़ गए, या कोई दो पहिया वाहन चालक किसी वाहन की ठोकर से सड़क में गिर गया। भले ही चोट ना आई हो, लेकिन इसी बात पर एक दूसरे पर दोनों वाहन चालक आरोप मढ़ते हुए भी सड़क में गिरे पड़े वाहन या अन्य कोई भी क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से तत्काल हटाने के बजाय बीच सड़क में वाद विवाद, गाली गुप्ता या मारपीट करने लगते हैं। इन दोनों ही पक्षों के वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या मारपीट होने से सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है और निर्दोष लोग परेशान होते हैं। अतः ऐसे लोगों को इस संदेश के माध्यम से हिदायत है कि प्रयास करें कभी कोई दुर्घटना ना हो। यदि जाने जाने कभी कोई ऐसी स्थिति हो भी गई तो तत्काल सड़क खाली करें। ध्यान रहे, इस सामान्य दुर्घटना की तुलना में 20 सड़क रोककर यातायात बाधित करना अधिक गंभीर अपराध है, भारी पड़ सकता है। अतः सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। इसे आप एक बार फिर सुन सकते हैं दिन में 10:55 पर। और यातायात संबंधी जागरूकता और सीख के बाद कार्यक्रम में आइए घोलते हैं गीत संगीत की मिठास। सुनिए और गुनगुनाइए ये प्यारा सा गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन, जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: जी हाँ मित्रों, आज शनिवार है और 8:30 पर ये समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं या हासिल करने की कोशिश करते ही रहते हैं। इनमें प्रमुख लक्ष्य होता है नाम, पैसा, पहचान। इन्हें पाने की लालसा में अक्सर एक चीज छूट जाती है और वो है रिश्ते, या कहें सच्चे रिश्ते। रिश्ते सिर्फ खून से जुड़े हों ऐसी बात नहीं है, ये तो दिल के जुड़ाव से बनते हैं, मन से मिलना जरूरी है। माँ की ममता, पिता का साया, दोस्तों की हंसी और किसी अपनों की चुप्पी, ये सब मिलकर जिंदगी को मुकम्मल बनाते हैं। आज रिश्तों के बिखरने की प्रमुख वजह में है समय की कमी। कहते हैं ना, फुर्सत नहीं है, ये वाक्य रिश्तों में दरार लाने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण बन जाता है। ध्यान रहे मित्रों, मोबाइल फोन की बैटरी तो घंटे भर में चार्ज हो जाती है, लेकिन रिश्तों की बैटरी सिर्फ प्यार, भरोसे और संवाद से ही चार्ज होती है। कभी कभी एक छोटा सा हालचाल पूछना या बिना वजह किया गया फोन कॉल किसी टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। तो आइए कीजिए एक वादा कि हम रिश्तों को वक्त मिलने पर नहीं बल्कि वक्त निकाल कर निभाएंगे। हमें उम्मीद है इस वादे को आप अवश्य निभाएंगे। आप सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी का, ये रिश्ता बना तो है लेकिन बंधा रहे सदा के लिए, हमारी यही कामना है। और इन चर्चा के साथ घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि कार्यक्रम आज सुबह के समापन का वक्त हो चला है। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ कार्यक्रम आज सुबह के इस अंक से दे अनुमति अपने साथी महावीर बरगाह को नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आई श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी की रचना। आर डी बर्मन का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है और फिल्म है जहरीला इंसान।

किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना मजरू सुल्तानपुरी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत था और फिल्म थी जहरीला इंसान। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले श्रोताओं सुनते हैं ये संदेश।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: dashlaw.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: शोर श्रोताओं, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। संतोष आनंद की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की ये रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म है पिया का घर।

0: छोटी सी बात। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना यशुदास और आशा भोसले के स्वर में। योगेश की रचना थी, सलील चौधरी का संगीत। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं शैलेन सिंह और लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी की यह शब्द रचना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है बॉबी।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: कार्यक्रम के समापन में आइए श्रोताओं सुनते हैं अमित कुमार और साथियों के स्वर में फिल्म बातों बातों से लिया गया ये गीत।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम

अमित खन्ना की ये रचना सुन रहे हैं आप, राजेश रोशन का संगीत है, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म है बातों बातों में।

और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया। कहा, ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी।

0: 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा

0: रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपये हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इसराइली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमरीका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कुत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कुत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियू हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद

0: में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्य के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Repolling begins in 15 polling stations of 2 assembly constituencies in West Bengal. Field operations for house listing and housing census under phase 1 commence in 5 states and 1 union territory. IMD forecasts very heavy rainfall over northeast region and southern peninsula today. U.S. President Donald Trump rejects Iran's proposal to end ongoing conflict, says Iran is seeking concessions they cannot accept. In badminton, Indian men's team to take on France in semi-finals of Thomas Cup in Denmark. And in football, Indian women team all set to play in AFC

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा।
5: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें सुनिए पेट संबंधी रोग और उनका आयुर्वेदिक उपचार विषय पर CGHS हॉस्पिटल की डॉक्टर पुष्पा राय से भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, भाग दौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खान पान और मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिताना परेशानी का कारण बन रहा है। श्रोताओं, खान पान जागने और सोने का भी एक निर्धारित समय होता है, लेकिन अभी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इसे अपना पाना हमारे लिए काफी कठिन हो गया है और इन सब चीजों का ध्यान न रखना हमारे शरीर के लिए काफी कठिन हो गया है। हम इन अनियमितताओं के कारण

0: लिंग रहे, पेशेंट को हमेशा ऐसे कमजोरी जैसा फील होगा खाना खाने के
1: मैं
0: बाद।
1: बहुत ही बल का ह्रास फील होगा, बल की कमी महसूस होगी और हाथ पैरों में स्वेलिंग और पेट ज्यादा निकला हुआ और क्रिश होगा,
0: ह्रास
1: क्रिश
0: फील होगा,
1: का।
0: बल की कमी महसूस होगी और हाथ पैरों में स्वेलिंग और पेट ज्यादा निकला हुआ और क्रिश होगा। क्रिश का है अर्थात तो बहुत दुबला पतला शरीर होगा लेकिन पेट आगे को निकला हुआ होगा। कुछ कुछ व्यक्तियों को मंदाग्नि के कारण जो व्याधियां होती हैं, तो मंदाग्नि से हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ मंदाग्नि जो होती हैं वो कभी कभी वय के अनुसार होती हैं, कभी कभी ऋतु के अनुसार मंदाग्नि हो सकती है और कभी कभी प्रकृति के अनुसार। अर्थात हम जानते हैं कि वात पित्त और कफ तीन प्रकृति होती है मनुष्य की, तो जो वातज प्रकृति के लोग हैं उनमें अक्सर विषम अग्नि होती है और विषम अग्नि का लक्षण ये है कि व्यक्ति को कभी मलबद्धता होगी, कभी लूज मोशन होंगे, कभी भूख बहुत अच्छी लगेगी, कभी भूख अच्छी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसकी जठराग्नि तीक्ष्ण होती है, उन्हें भूख ज्यादा लगती है, उनका पाचन भी एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छा पाचन होता है, ज्यादा भूख लगती है और पित्त की प्रकोप के लक्षण मिलेंगे जैसे कि खट्टी डकार आना और शरीर में जलन होना, हाथ पैरों में जलन होना, इस तरह के लक्षण आएंगे। और जो मंदाग्नि कफ वाले व्यक्तियों को होगी तो कफ प्रकृति में अपने आप ही अग्नि उनकी थोड़ी मंद होती है, तो उनके अलग मंदाग्नि के लक्षण होंगे, उनको भी भोजन को पचाने में समस्या होगी। कुछ वय के अनुसार होते हैं, जैसे बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था में जो शरीर है वो कमजोर रहता, अभी बन रहा होता है तो उसमें कफ प्रधान होता है, तो उनके बाल्यावस्था के समय भी मंदाग्नि के लक्षण मिलेंगे। तरुण अवस्था में अग्नि तीक्ष्ण मिलेगी और जो वृद्धावस्था है उसमें विषम अग्नि मिलेगी। यानी जब हम मंदाग्नि देखते हैं या कोई पेशेंट हमारे पास मंदाग्नि के आते तो हम ये देखते हैं कि इनकी वय क्या है, ये किस ऋतु के अनुसार क्या है। ऋतु विशेष में भी मंदाग्नि होती है, तो यदि वो वर्षा ऋतु में आए हैं तो वर्षा ऋतु में प्रकृत रूप से मंदाग्नि होती है, तो उससे हमको बहुत ज्यादा चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक तरीके से है। किसी वय में किसी बालक को मंदाग्नि है तो हम उन्हें बहुत ही माइल्ड मेडिसिन्स देते हैं क्योंकि वो बाल्यावस्था में मंदाग्नि रहती ही रहती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आता है वृद्धावस्था में तो उनका कभी पेट सही रहेगा, कभी भूख खुल के लगेगी, कभी कम लगेगी, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कभी लूज मोशन रहेगा, तो उनकी वात की अवस्था उनकी उम्र के हिसाब से वय के अनुसार है तो उनको विषम अग्नि रहेगी, तो हम उसी हिसाब से सोच के फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन ये जो व्याधि है उनको उदर की या पेट की वो उनकी वय के अनुसार है, उसी प्रकार से ऋतु के अनुसार व्याधि हो गई, उदर के रोग। तो इस प्रकार से हम पेशेंट को देखते हैं कि किस ऋतु में किस प्रकार से पेशेंट दिखा रहे हैं और क्या कंप्लेन है, फिर उसी हिसाब से उनकी चिकित्सा और लक्षण को कोरिलेट करके चिकित्सा करते हैं।
2: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर पुष्पराज जी, कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम सुने।
0: जी जी हाँ, अभी हमारे बीच

0: आशा जी नहीं हैं, और उनका एक बहुत ही फेमस गाना जो कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करना चाहूँगी। वो दोनों अनुराधा जी और लता जी ने ये गाने को मिलकर गाया, बहुत ही खूबसूरती से गाया है। वो गाना है छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के।
1: आइए सुनते हैं पुष्पा जी की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओ, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर पुष्पा राय जी से, जो CGHS हॉस्पिटल रायपुर में आयुर्वेद विभाग में हैं, और बात कर रहे थे पेट संबंधी कुछ बीमारियों के बारे में। तो पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे कि जो पेट की संबंधी जो बीमारी की बात हम कर रहे थे, तो उन बीमारियों में सबसे प्रमुख और आम समस्या कब्ज की है, जो बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों को भी होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे बचा जा सकता है?
1: जी, जो मलबद्धता है वो भी वय के अनुसार भी निर्भर करती है। जैसे वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है तो उस समय मलबद्धता रहती रहती है मरीज को, या जो मरीज फिजिकली एक्टिव नहीं है, योगा प्राणायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा जिनकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, चलते फिरते नहीं है, तो उनमें लक्षण ये मिलता है पूछने पर कि उनकी मल की प्रवृत्ति या तो सुबह जल्दी 1-2 घंटे के अंदर मल की प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे के अंदर यदि मल की प्रवृत्ति स्वयं बने, प्लस उनको मल करते समय भी ऐसा लगता है कि मल अधूरा ही मल की प्रवृत्ति हुई है, पूरे तरीके से उनको सेटिस्फाइड डेफिकेशन नहीं रहता है। मल करते समय या तो गुदा मार्ग में बहुत ज़्यादा उनको पेन की समस्या होती है, या किसी किसी को प्रवृत्ति कम रहती है कि उनको पाइल्स और फिशर और इस तरह की भी समस्याएं हो जाती हैं। तो हम जैसा मरीज मलबद्धता के लिए आते हैं तो पहले उनसे हम प्रश्नों के द्वारा उनसे पहले पड़ताल करते हैं कि किस प्रकार का उनका खान पान है, क्या यदि उनके खान पान में कोई बदलाव की ज़रूरत है, या उनका जो दिनचर्या है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्या वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, अपने दिनचर्या में उन्होंने योगा प्राणायाम शामिल किया है कि नहीं किया है, खान पान में जैसे कि रफेज़ वाली चीज़ें हो गई, सब्जियाँ हो गए, फल हो गए, बहुत सारे सैलड हो गए, और काफ़ी अंकुरित अनाज वगैरह वो सबका सेवन कर रहे हैं कि नहीं, तो वैसा हम उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं। प्लस बहुत सारी आयुर्वेद में मलबद्धता के लिए औषधियां हैं, जैसे हम त्रिफला चूर्ण देना है तो प्रकृति के अनुसार हम त्रिफला चूर्ण के साथ अनुपान भी अलग बताएंगे। यदि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो हम उनको शहद के साथ, घी के साथ बोले त्रिफला चूर्ण घी के साथ लेना है पित्त प्रकृति में। यदि कोई व्यक्ति वातज प्रकृति है जिसमें वात के लक्षण ज्यादा है तो उनको घृत, उनको शहद के साथ, फिर कफज प्रकृति को शहद के साथ, किसी को तिल तेल के साथ, वो व्यक्ति को देख के उसी हिसाब से डिसाइड करके हम वो मलबद्धता के लिए लेना है।
0: जी जी जी। तो डॉक्टर पुष्पा जी, अभी आपने बताया एक जो प्रमुख जो इससे जुड़ी हुई पेट से संबंधित बीमारी IBS, तो आजकल ये काफी आम हो चला है, कई बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं IBS से पीड़ित हूँ, तो ये क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें किस तरह के ट्रबल जो है देखे जाते हैं?
1: हाँ, ये अभी की जो लाइफस्टाइल है उसके अनुसार ये समस्याएं अभी के व्यक्ति पर्सन्स में ज्यादा देखने को मिलती है। उसमें लक्षण ये मिलता है कि बार बार उन्हें मल की प्रवृत्ति होती है और इनकम्प्लीट डेफिकेशन होता है, प्लस खाना खाते ही उन्हें दोबारा मल की प्रवृत्ति होती है, पेट में दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ होना, और प्लस वो व्यक्ति जो होता है वो कमजोर होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उनका फूड का सही से पाचन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और उनको धीरे धीरे कमजोरी फील होने लगती है, आयरन की कमी हो जाती है उनके शरीर में। तो हम उसके लिए जो IBS के पेशेंट्स हैं उनके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ वर्णित की गई हैं, तो उनको देख के पेशेंट के हिसाब से प्रकृति का डिसीजन लेके उनके लिए चिकित्सा प्लान बनाते हैं। प्लस उनमें विरेचन करवा सकते हैं व्यक्ति को, जैसे एरन तेल पान करा सकते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण के द्वारा चिकित्सा की जाती है।
0: जी जी। आजकल की जो दिनचर्या है उससे जो है इस तरह की जो बीमारियां, जैसे अभी आपने IBS बताया, तो इनके होने की संभावना काफी हो जाती है, क्योंकि ये सब लाइफ स्टाइल संबंधित बीमारियां हैं और इनकी जो है प्रवृत्ति आजकल आम हो गई है, तो इसमें आयुर्वेद काफी मददगार साबित हो सकता है। तो डॉक्टर पुष्पारा जी, जब हम पेट की बीमारियों की बात करते हैं तो इनकी पड़ताल किस तरह की जाती है, या इसके लक्षण जैसे आपने बताए तो इसमें कुछ जाँचें भी हो सकती हैं, तो वो कौन कौन सी जाँचें हैं जो

0: होती है।
1: जी सबसे पहले तो यदि पेशेंट आते हैं तो हम सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी के द्वारा वो पेट की पूरी जांच का पता चलता है कि कहीं लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सीटी स्कैन और एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे इससे क्लियर हो जाता है सोनोग्राफी से। उसके अलावा खून की कुछ जाँचें हैं जिससे भी पता चल जाता है कि रक्त में उनके लक्षण देख के उसके हिसाब से, प्लस पेशेंट जो बताते हैं अपना खुद का स्वयं का वृत्तांत की उनकी हिस्ट्री लेके पता चलता है कि किस तरह से उनका स्टूल पास है, उनका भोजन का रूटीन क्या है, सोने जागने का क्या रूटीन है, तो ये स्वयं पेशेंट को पूछ के भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है।
0: जी। तो डॉक्टर पुष्पराज जी, जब हम बात करते हैं पेट की, पेट संबंधी बीमारियों और आयुर्वेद, तो आयुर्वेद किस तरह मददगार साबित हो सकता है हमारे पेट के रोगों के इलाज में और साथ ही पेट के रोगों से बचने के लिए?
1: हाँ जी, आयुर्वेद में जितनी भी व्याधियाँ हैं वो रोगाः सर्वे अपि मंदो अग्नि, अर्थात मंद अग्नि होने से, हमारी जो जठराग्नि जब मंद हो जाती है तो आयुर्वेद के हिसाब से सारी व्याधियाँ मंद अग्नि से होती हैं। तो आयुर्वेद में जो मैक्सिमम चिकित्सा जो जो की जाती है वो व्यक्ति के हिसाब से वो मंद अग्नि की जाती है, यानी कि जिनका पाचन सही नहीं है उनको हम एडवाइस ये करते हैं कि भूख जब तक ना लगे तब तक आप भोजन ना करिए, या फिर लंघन करना। लंघन करना यानी रात में भोजन, यानी आपने शाम को 6 बजे खा लिया है तो अगले दिन आपको पूरा 12 से 14 घंटे का लंघन करना है, यानी पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है। तो अपने आप ही गैस्ट्रिक जूस और वो सारी जो मल और जो प्रवृत्ति है या जो शरीर में टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। तो सुबह 10 बजे खाना है, यानी 16-17 घंटे एक्स्ट्रा लंघन कराना है। लंघन के अलावा हम उनको दीपन पाचन औषधियां देते हैं। दीपन पाचन औषधियों में ऐसी औषधियां जो भूख को बढ़ाती हैं, और हम उन्हें खान पान के अलावा हम उन्हें ये भी देखते हैं कि पेशेंट में जो ये लक्षण है, जो भी उदर रोग है, क्या ये मानसिक कारणों से तो नहीं है। तो बहुत सारे जो भी बीमारियां हैं वो कई बार मन के कारण होती हैं, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता, भय, शोक आदि से ग्रसित है तो उसको मन की बीमारियों के कारण पेट के रोग हो जाएंगे। तो उनको हम प्राणायाम एडवाइस करते हैं, या फिर रेगुलर उनको बोलते हैं कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ जैसे इसमें पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, कुछ योगासन भी उनको बताते हैं कि आपको ये डेली योगासन करना है, और अपने हिसाब से डाइट प्लान बताते हैं उनको किस हिसाब से कितने बजे खाना खाना है, नाश्ता करना है, फिर रात्रि भोजन कितने बजे लेना है। फिर धीरे धीरे यदि पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेता है और उसको फॉलो करते हैं तो वो बहुत सारे मैक्सिमम उदर रोगों से को छुटकारा मिल जाता है।
0: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी है। यदि इस तरह की आयुर्वेद के बताए गए नियमों का फॉलो करें तो बेशक ही व्यक्ति पेट की संबंधित बीमारियों से बच सकता है। तो पुष्पा जी, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल और हम और लेंगे और आपसे चाहेंगे कि एक गीत और सुने हम।
1: जी, अभी भी मैं चाहूंगी कि आशा जी का ही एक बहुत ही फेमस गाना है, चुरा लिया है तूने जो दिल को, ये गाना मैं बहुत बचपन में सुना करती थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो गाना
0: जी जी
1: श्रोताओं को
0: जी
1: सुनाया जाए।
0: जी तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा राय जी की पसंद का ये गीत।

0: श्वेता, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे पेट संबंधी कुछ बीमारियां और उनके आयुर्वेद उपचार के विषय में डॉक्टर पुष्पा राय जी से। और पुष्पा राय जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेट संबंधी बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा खान पान ये काफी महत्वपूर्ण होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेट के रोग ना हो या कम से कम हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जी, इसके लिए हमें तो दिनचर्या का पालन करना चाहिए, प्लस जो भी हमारे आहार हैं वो सुपाच्य होना चाहिए। और दूसरा, हमें यदि आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से औषधियों का सेवन, जो भी औषधियां हैं, यदि जो बीमारी है उस हिसाब से दीपन पाचन की औषधियों की ज़रूरत है या फिर मलबद्धता के लिए ज़रूरत है, वैसी सलाह लेके उपयोग करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि यदि बहुत बढ़ जाती है बीमारी तो उसमें फिर पंचकर्म से इलाज संभव है, जिसमें कि विरेचन है, स्नेहन स्वेदन और विरेचन और अनुवासन और निरूबस्ती दी जाती है पेशेंट को और पेशेंट उससे लाभान्वित होते हैं। प्लस मैं ये मरीजों को कहना चाहूंगी कि अपने खान पान में आप बहुत सारी रफेज की चीजें, जैसे साग सब्जियां हो गया या फिर सैलड वाली चीजें हो गई, और दूसरी चीज जिनको भूख कम लगती है उनके लिए सलाह ये है कि वो अदरक और सेंधव नमक का सेवन भोजन के पूर्व 2-3 बार करें, तो उससे उनकी अग्नि प्रदीप्त होगी और मंदाग्नि की समस्या नहीं रहेगी और भोजन का पाचन भी अच्छे से होगा। और प्लस प्राणायाम और योग के द्वारा भी उनकी बहुत सारे उदर रोग या पेट संबंधी रोगों का इलाज संभव है।
0: तो डॉक्टर पुष्पा जी, आप पेट के रोगों की हम बात करें तो इसमें व्यायाम या योगा जो है कितना मदद कर सकता है बीमारियों से बचने के लिए?
1: जी, अब योगा ऐसा है कि जो व्यक्ति योग करता है वो बहुत नियमित होता है, और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से आपको यदि नियम का पालन करते हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, तो आपकी मैक्सिमम बीमारियां वैसे ही नहीं होती हैं। तो योग तो उनको हर तरह से मदद करने वाला है, क्योंकि योग के कारण फिर मन के रोग भी नहीं होंगे, उनको स्ट्रेस नहीं होगा, तो स्ट्रेस ना होने से वैसे भी वात प्रकुपित नहीं होगा, सभी दोष समावस्था में रहते हैं जो व्यक्ति योग प्राणायाम करते हैं। तो उदर रोग यदि हो भी जाते हैं तो वो इजीली ठीक भी हो जाते हैं उन मरीजों के।
0: डॉक्टर पुष्पा राय जी, जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम भूख से ज्यादा भी खाते हैं, और असंतुलित जो खाना है वो कई तरह की पेट संबंधी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो हमारे पूरे दिन की खाने की दिनचर्या होती है वो कैसी होनी चाहिए और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए?
1: जी, भोजन में मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप भोजन लें तो सबसे पहले आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों का वर्णन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अर्थात भोजन कैलोरी के हिसाब से आयुर्वेद में नहीं वर्णित है, रसों के हिसाब से वर्णित है। तो जब हम जो भी भोजन करते हैं उसमें सबसे पहला जो रस होता है वो मधुर रस होना चाहिए, जैसे घर में बनी हुई कोई भी मिठाई, लड्डू, कुछ एक मधुर रस, और बीच में आप कटु, तिक्त और लवण रस लीजिए, और सबसे अंत में कषाय रस होना चाहिए। कषाय रस जैसे कि 1 चम्मच आंवले का पाउडर हो गया या फिर छाछ हो गया 1 ग्लास, इस तरह का वर्णित है, ताकि सभी दोष समावस्था में रहे। और मधुर रस जो होता है वो वात को शमन करता है, तो वात को वो शमन करेगा, और जो कषाय रस है वो पित्त को शमन करता है, तो हमारे सभी दोष समावस्था में रहते हैं। सुबह में हमें भोजन जो है वो नाश्ते का भोजन थोड़ा हल्का रखना चाहिए, क्योंकि उस समय कफ का प्रकोप रहता है, कफ ज्यादा बढ़ी रहती है। दिन में पित्त जब ज्यादा बढ़ा रहता है 10 बजे से लेके 2 बजे तक का जो है वो लंच हैवी होना चाहिए, उसमें आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो आप जो भी

0: खाना खाते हैं अच्छा पचता है,
1: हम्म,
0: लेकिन जो 2 बजे के बाद का सूर्यास्त का जब समय धीरे धीरे नजदीक आने लगता है तो हमें भोजन को कम करना चाहिए या फिर भोजन 6 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे उदर रोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे यदि हम समय का पालन करें कि सुबह हमें 8 बजे 9 बजे तक कुछ भी हल्का नाश्ता कर लें, 12 बजे तक लंच कर लें और शाम के 6 बजे तक डिनर समाप्त कर लें, तो बहुत सारे उदर रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं।
1: जी, बेशक ही डॉक्टर पुष्पा जी, अगर हम नियमित दिनचर्या का

0: सारे उदर रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं।
1: जी, बेशक ही डॉक्टर पुष्पा जी, अगर हम नियमित दिनचर्या का पालन करें और जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है उन नियमों का पालन करें तो हम पेट संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम हमने पेट संबंधी बीमारी और उसके आयुर्वेद उपचार पर किया है, और बेशक ही इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता लाभ ले सकेंगे। आप कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं को पेट संबंधी बीमारियों और उनके आयुर्वेद उपचार पर जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आप सुन रहे थे पेट संबंधी रोग और उनका आयुर्वेदिक उपचार विषय पर सीजीएचएस हॉस्पिटल की डॉक्टर पुष्पा राय से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे रामाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों पर कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार से भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
3: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। इसके साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरक के बजाय वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार। मैडम, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
4: शुक्रिया
3: मैडम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच छत्तीसगढ़ में खाद और उर्वरक की उपलब्धता कैसी है, किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की गई है, और हर वर्ष यहाँ पे राज्य में किसानों को औसतन कितने उर्वरक की जरूरत होती है, और इस वर्ष अभी वर्तमान में कितना रासायनिक खाद का स्टॉक मौजूद है।
4: मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगभग 14 से 15 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है खरीफ के सीजन में, और पश्चिम एशिया की जो असामान्य परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं उसके मद्देनजर हम लोगों ने अपनी व्यवस्था को चुस्त करने के लिए काफी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की हैं। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास 55 से 56% रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है, किंतु एक उर्वरक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसानों के लिए बेसल डोज के रूप में रूट के ग्रोथ के लिए और शुरुआती में वो डालते हैं, तो उसका वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसकी कमी है, हालांकि विगत वर्षों में भी उसकी किल्लत रही है, और उसके लिए ही हम लोग किसानों के साथ अपने विभागीय अमले के साथ रणनीति तैयार करते हैं कि किन विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना है उसके प्रतिस्थापन के लिए। जैसे फिलहाल हमारे पास यूरिया जो है वो करीब 45-46% उपलब्ध है, पर यूरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो तीन चरणों में किसान यूज करते हैं, शुरू में भी करते हैं, फिर बीच में कुछ समय बाद करते हैं धान की बोनी के, किंतु डीएपी का उपयोग शुरू में ही करते हैं। तो यूरिया की आवक हमारे पास बनी हुई है। डीएपी हमारे पास 35 से 36% है सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिला करके। तो डीएपी के विकल्प के रूप में एक हम नैनो डीएपी को ले रहे हैं जो तरल फॉर्म में रहता है, और ये जो हम जिस खाद की बात करते हैं वो ग्रैन्यूलर फॉर्म में रहता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। नैनो डीएपी जो है या नैनो यूरिया वो जो है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इसका 500 लीटर एक बैग को रिप्लेस करता है। विगत वर्ष भी कुछ उठाव हुआ था और इस वर्ष हम लोग बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करें ताकि वो जो ग्रैनुलर फॉर्म में जो कमी है उसका प्रतिस्थापन किया जा सके। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि विगत वर्ष भी किल्लत थी तो उसको हमने रिप्लेस किया था, प्रतिस्थापित किया था एनपीके से, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश होता है, और एसएसपी से, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये दोनों खाद भी बराबर ही उपयोगी हैं, सो इस तरीके से हम लोगों ने जिलेवार एक रणनीति बनाई है कि जहां पर जितना भंडारण है और जो जिले की कंजम्पशन है

0: उसको प्रतिस्थापित किया जाए इन खादों से। इसके अतिरिक्त हम लोग बायो फर्टिलाइजर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये चुनौती एक अवसर के रूप में भी सामने है
1: जी।
0: जो सस्टेनेबल कृषि की हम लोग बात करते हैं
1: जी।
0: या भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है और पूर्व से ही हमारे राज्य में जैविक खेती मिशन भी चल रहा है राज्य पोषित योजना के रूप में। तो जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो बिल्कुल परंपरागत पद्धति है और उसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को भी हमने क्लस्टर के फॉर्म में राज्य ने लिया हुआ है विगत वर्ष से। तो इस चुनौती को हमने किसानों से ये अपील की है कि हम इसको एक अवसर की तरह देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है, इतना बेहतर यहाँ का क्लाइमेट है, तो हम क्यों ना सस्टेनेबल कृषि की ओर जाते हुए बायो फर्टिलाइजर का यूज करें और जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं परंपरागत उनका भी उपयोग करें। तो हमारा खुद का बीज निगम का एक प्लांट है जो 1,00,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करता है। डीएपी के विकल्प एक पीएसबी भी है जो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग होता है, उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं।
1: मैडम, जब भी जैसे कोई संकट होता है तो उस समय कुछ कतिपय तत्व जो है उसका फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी भी करते हैं, जमाखोरी भी करते हैं, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन क्या कर रहा है?
0: जी, इस पे अंकुश लगाने के लिए भी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी है। यद्यपि हर साल निगरानी तंत्र सक्रिय होता है, पर चूंकि इस बार थोड़ी असामान्य है स्थिति, इस वजह से जिलों में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, इनके कर्मचारियों को लेकर उड़न दस्ते का गठन किया गया है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगी कि अप्रैल के महीने में हमने लगभग 600 निरीक्षण किए। जो दुकानें हमारी सोसाइटीज हैं जिनसे खाद बीज मिलता है किसानों को, जहां से वो ऋण लेते हैं, और निजी दुकानों का भी किया, और उसमें करीब 150 से अधिक कालाबाजारी के प्रकरण और लाइसेंस निलंबन के प्रकरण सभी जिला में कलेक्टरों ने इसमें कार्रवाइयां की हैं। और ये सीजन है जिसमें हम लोग जिला कलेक्टरों से बात करते हैं अलग अलग संभागों में बैठ के, तो वहां भी ये बहुत लंबी चर्चा हुई है कि इस व्यवस्था को, निगरानी तंत्र को बराबर बनाए रखना है खरीफ के अंत तक, ताकि जो किसान है, लघु सीमांत किसान है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो तो पहले उनकी पूर्ति की जाए। बहरहाल सभी जिलों में जिला कलेक्टर ने टीम बनाई है, उड़न दस्ता है, वो सक्रिय है, उनसे लगातार छापा और निरीक्षण की कार्रवाई हो रही है। और इसके अतिरिक्त पंचायतों में भी निगरानी समितियां हैं, जो करीब हमारे यहाँ 10,000 निगरानी समितियां गठित हैं।
1: मैडम, वैसे तो आपने बताया है कि जो रासायनिक खाद है उसके विकल्प के रूप में क्या उपाय किए जा रहे हैं, अभी आपने हाल में काफी जो है वो समीक्षा बैठकें भी ली हैं, तो किसानों को हरी खाद और जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं।
0: हम लोगों ने इस बार हरी खाद को बृहत पैमाने पर उपयोग करने की योजना बनाई है और विभिन्न जिलों में किसानों को चिन्हांकित किया गया है जो बड़े किसान है। हरी खाद में सनई और ढेंचा के बीज का इस्तेमाल होता है और साथ साथ में हम मूंग भी डाल रहे हैं और उसके मिक्स पैकेट बना करके किसानों को दिया जाएगा। हरी खाद के उपयोग के लिए सभी जिलों को बताया गया है कि अपना एरिया तय कर लें, क्षेत्र कर लें, किसान को चिन्हांकित कर लें, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हरी खाद का उपयोग किया जाए। जैसे अभी बस्तर संभाग आपको पता होगा कि बहुत ही समृद्ध संभाग है, मैं कहूंगी हर दृष्टिकोण से, वहां बारिश पहले आती है, वहां खेती पहले शुरू होती है। तो वहां जब हमने 7 जिलों की समीक्षा की और वहां बहुत उत्साह दिखा हमारी टीम में कि हरी खाद का प्रयोग बड़े पैमाने पर करेंगे, और हमने ये सुझाव दिया है विभागीय अमलों को कि हर जिले में कुछ न कुछ ऐसे गाँव लें जो पूरी कम्प्लीटली जिसमें हरी खाद का उपयोग हो। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये बहुत पहले समय इस्तेमाल होता था, अब उसका प्रयोग बंद हो गया है। हमारे अधिकारियों की एक बहुत अच्छी टीम और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने, हम लोगों ने ये योजना बनाई, तो इसके लिए भी हम लोगों ने जो हमारा टांका बना रहता है उसमें कल्चर देके उसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसके लिए भी किसानों को चिन्हित किया गया है, प्रेरित किया गया है, आने वाले समय में हमको इसका परिणाम दिखेगा। ये भी काफी उपयोगी चीज है, खास करके धान की फसल को लेकर के।
1: अभी आपने मैडम बात की है कृषि वैज्ञानिकों की, तो रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय भी हैं, इसके अलावा हर जिले में किसान केंद्र भी हैं, तो ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लैब और फील्ड के बीच में एक थोड़ी सी दूरी होती है, तो उस दूरी को पाटने के लिए खासतौर से ऐसे संकट के समय में किस तरह की मदद ली जा रही है इन कृषि वैज्ञानिकों की?

0: ये लैब टू लैंड की बात हम लोग काफी समय से करते आए हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि लगभग प्रतिदिन मेरा संवाद मेरे वैज्ञानिकों के साथ है, चाहे धान की विकसित किस्में हैं या कम पानी, ड्रॉट रेजिस्टेंट, ये सारी चीजों को हमको उनसे समझना पड़ता है और किसानों तक ले जाना पड़ता है। और आपको स्मरण होगा कि विगत वर्ष से खरीफ में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, इस वर्ष भी हम लोग अभी उसको मई में प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो अभियान है इसमें हर गाँव में एक टीम जाती है जिसमें न सिर्फ विभागीय अमला रहता है बल्कि वैज्ञानिकों का चिन्हांकन किया जाता है। और फिर हम लोग यही बात करते हैं कि बदलते परिवेश में, बदलती जलवायु में, क्लाइमेट वार्मिंग में किस तरीके से हम लोगों को अपनी पद्धतियां परिवर्तित करनी है जिससे पानी और मिट्टी दोनों की सुरक्षा हो सके और जो नेचुरल तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। पर उनको हम दूसरा बेनिफिट समझा रहे हैं कि जो नई उन्नत किस्में हैं उसमें पानी कम लगता है, उसमें रोग कम लगता है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमको पानी और मिट्टी को संरक्षित करके देना है।
1: हर जिले में सुगंधित धान की भी फसल को प्रोत्साहित करने के लिए कहा है।
0: हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे कोई बेहतरीन चीज है तो वो है यहाँ का सुगंधित एरोमेटिक राइस। और चूंकि कॉमन धान और इसका ज्यादा उपार्जन कर रहे हैं किसान लाभ के दृष्टिकोण से, तो अभी हम लोगों ने एक प्लानिंग की है विभाग के तौर पे कि हर जिले में हमने कहा है कि कम से कम आपके जिले में जो होता है, जैसे विष्णु भोग है, जावा फूल है, तुलसी माला है, लुक्ति माशी है, इतनी वराइटीज है धान की और बेहतर किस्म की धान की, अच्छी सुगंधित, तो अभी हम लोगों ने सभी कलेक्टरों से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन एरोमेटिक वैरायटी को प्रमोट करें ताकि ये जो छत्तीसगढ़ का धन है इसको हम लोग और प्रोपोगेट कर पाएं और किसान, इसकी मार्केट में बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है तो वो किसान के लिए लाभकारी है।
1: मैडम एक बात और कि जो राज्य शासन है वो बीज और उर्वरकों के वितरण के लिए एक नई ई उर्वरक वितरण प्रणाली लागू कर रहा है, ये प्रणाली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: जी, ये उर्वरक प्रणाली जो है वो एक छत्तीसगढ़ ई उर्वरक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बीज का वितरण एक साथी पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से किया जाएगा। पर जो रासायनिक उर्वरक की जब हम बात करते हैं तो इसमें कालाबाजारी और किल्लत को देखते हुए जमाखोरी आदि आदि कई समस्याएं हैं, तो राज्य शासन ने ये निर्णय लिया है कि हम इसको ई उर्वरक पोर्टल के माध्यम से करेंगे, जिसका जुड़ाव हमारा जो भूया पोर्टल है जहां किसानों की जानकारी और रकबे की जानकारी है, हमारा एक एकीकृत किसान पोर्टल है और एक एग्री स्टैक चल रहा है प्रोग्राम भारत सरकार का
1: जी।
0: इन सब से उसको जोड़ा जाएगा, किसानों का डेटा रहेगा उसमें। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि भूमि धारिता के हिसाब से खाद का वितरण किया जाएगा ताकि पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था हो, और किसानों को ई टोकन दिया जाएगा जिसमें विक्रेता जो केंद्र है वहां की जानकारी रहेगी, उनको समय सीमा रहेगी उसमें कि किस समय सीमा में उनको एक दिन दो दिन में उठाव करना है। और साथ ही साथ किसान जो स्टॉक है उस दुकान में, चाहे वो सहकारी समिति हो निजी, उसको भी देख पाएंगे। हमारा विभागीय अधिकारियों के साथ ट्रायल चल रहा है।
1: मैडम इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि पीएम किसान पोर्टल से एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है, किसानों के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, एग्री स्टैक जो परियोजना है भारत सरकार की उसमें तीन चीजें हैं मुख्य रूप से, अगर हम उसको समझेंगे तो फार्म आईडी, मतलब हर प्लॉट जिसमें फार्मिंग की जाती है, किसान खेती करते हैं उसका एक आईडी है, यूनिक आईडी। उस फार्मर के पास अगर जितना भी लैंड बकेट है उसकी एक आईडी, किसान की आईडी। और तीसरी चीज है डिजिटल क्रॉप सर्वे, जो गिरदावरी होती थी वो डिजिटल गिरदावरी की बात है और वो शुरू भी हो गया है अपने प्रदेश में। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ धान की खरीदी भी एग्री स्टैक में पंजीकृत किसानों के माध्यम से हुई है, तो 30 लाख से अधिक किसानों का एग्री स्टैक में फार्मर आईडी निर्मित है। और इस एग्री स्टैक परियोजना का मूल उद्देश्य ये है कि किसानों की पूरी जानकारी, डेटा एक जगह संकलित रहे, एक ही प्लेटफॉर्म रहे जहां से सारी योजनाओं का विस्तार किया जाए। अपने यहाँ लगभग 26 लाख के करीब सक्रिय पीएम किसान के हितग्राही हैं और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हमको उन्हें अब एग्री स्टैक सबकी फार्मर आईडी बनानी है ताकि भविष्य में आने वाली किश्तें इसी के माध्यम से दी जाएंगी।
1: मैडम इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगी कि जो हमारी प्राकृतिक पद्धति थी उसको अपनाने के लिए आगे आएं, साथ में हमारे कृषि

0: विज्ञान केंद्र है, वैज्ञानिक है और विभाग का अमला है, उसका उपयोग करके हम लोग सस्टेनेबल कृषि की तरफ जाएं, जिसमें हम अपने जलवायु को संरक्षित रखें, मिट्टी को संरक्षित रखें, पानी को संरक्षित रखें। ग्रीष्मकालीन धान बिल्कुल ना लें, उसकी जगह जो उच्च मूल्य की फसलें हैं वो लें, तिलहन की फसलें लें, दलहन की फसलें लें। भारत सरकार के मिशन के अंतर्गत सब्सिडी का प्रावधान है और सारे दलहन मिशन चल रहा है, तिलहन मिशन चल रहा है, प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है, उनका लाभ लें। और साथ ही राज्य सरकार ने धान के अलावा जो अन्य फसलें लेने वाले किसान हैं उनको भी प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है, और साथ ही उर्वरक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। इसको लेके कोई भी पैनिक की स्थिति नहीं हो, जो डीएपी के विकल्प हैं उसको सहर्ष अपनाएं, खेती पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
1: मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, और आकाशवाणी समाचार की ओर से, आकाशवाणी के श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार के साथ यह भेंट वार्ता। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: बातों बातों में कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों पर कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार से भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी।
3: बातों बातों में इसका अनुप्रसारण अभी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। आई श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से 9:55 तक।

द डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे कमाल खान का गाया हुआ ये गाना। रजत अरोरा ने लिखा था और विशाल शेखर ने संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना सिंघम फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीत से संवारा है अजय अतुल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में आपने हिच की फिल्म का ये गाना सुना, राजशेखर के बोल, जसलीन रॉयल का संगीत। और यहीं तक है आज का सफर चित्रलोक कार्यक्रम में। डीजे राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी। वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी। वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था। वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं। सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहाँ आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है

ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म दो बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपू त्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसा घर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
2: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
2: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
2: तो
0: साथ
2: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो, तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं मैं बात करती हूँ उनसे, तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे
2: मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
3: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या?
4: वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब,

0: दोनों वजहों में फर्क क्या है?
1: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, यह आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
0: दो घर?
1: जी हाँ, दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
2: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी।
0: मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
1: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
0: क्यों, उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
0: और तार?
2: जी हाँ।
1: तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
0: क्यों?
1: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
0: बुरी खबरें?
1: आपने कुछ सुना नहीं?
2: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
1: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
3: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं, फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या है। लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ऐसी एक आवाज थी बड़ी इम्प्रेसिव
1: जी,
0: और उन्होंने कहा कि कम आप, मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
1: जी।
0: पहली मरतबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
1: जी हाँ।
0: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
1: अच्छा।
0: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे, तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक, और फिर कहने लगे कि अच्छा उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
1: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
0: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी अ गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क, इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माय वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव अ लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव अ लुक एट यू
1: जी,
0: एंड हियर इज माय स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
1: ओहो।
0: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर, और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
1: जी,
0: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया पता नहीं कहाँ से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरै फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरै फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: फिर अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि I don't know what he has written, but it sounds very good.
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दाई कहते थे।

कुछ दिनों के बाद फिर मानिक दा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई इसे अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था कि वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज

0: आज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीजें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज पुराने जमाने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था। और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी और उसकी बहुत सारी मिसालें थीं। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्रगुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुँचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने।
2: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खनिज सचिव ने कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित की। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध रेत खनन पर सख्ती तेज कर दी है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने रेत आपूर्ति करने वाले 11 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने कहा कि रेत की आपूर्ति में कोई कमी न रहे और स्वीकृत खदानों से क्षमता के अनुसार उत्पादन कर आम लोगों को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त रेत देने के निर्देशों का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में कल से प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई है। अभियान के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए, जहां मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर

0: लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के रिसदा गांव में 573 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 47% का मौके पर ही निराकरण किया गया। कोरबा जिले के धनराज गांव में 332 आवेदनों में से 103 का तत्काल समाधान हुआ। रायपुर जिले के कठिया गांव में आयोजित शिविर में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कल नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 3,556 बीज उत्पादक किसानों को 8 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित की। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंडी निधि के तहत हितग्राहियों को ये राशि दी गई। इस मौके पर प्रदेश के सैकड़ों किसान प्रक्रिया केन्द्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 जून से 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पन्न होगी। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए 28 अप्रैल से 1 मई तक चयन ट्रायल का आयोजन रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया गया। 4 दिवसीय चयन ट्रायल के अंतिम दिन कल हॉकी और एथलेटिक्स के खिलाड़ियों के खेल कौशल का ट्रायल लिया गया। 4 दिनों तक चले चयन ट्रायल में हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी और वेटलिफ्टिंग के कुल 753 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हॉकी में 284, तीरंदाजी में 95, फुटबॉल में 89, एथलेटिक्स में 256 तथा वेटलिफ्टिंग में 29 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश के मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जबकि दक्षिण ओडिशा से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ सहित विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इस मॉकड्रिल में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, साथ ही कमियों को चिन्हित कर उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित प्रबंधन को दिए गए। खनिज सचिव ने कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित की और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के कार्यक्रम अमराई का। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं GD मानिकपुरी, गंगाराम सहारे, दयाराम ओगरे और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को। कार्यक्रम में पहले आइए सुनते हैं GD मानिकपुरी और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीत।

जी डी मानिकपुरी और साथियों को आपने सुना। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत कार्यक्रम अमराई के अंतर्गत आई श्रोताओं, अब सुनते हैं गंगाराम सहारे, दयाराम ओगरे और साथियों के गाए कुछ गीतों को। लेकिन उससे पहले एक संदेश।

गंगाराम सहारे, दयाराम ओगरे और साथियों को आपने सुना। अमराई में आइए श्रोताओं, इन्हीं कलाकारों के स्वर में सुनते हैं अगला गीत।

गंगाराम सहारे, दयाराम ओगरे और साथियों को सुना। अमराई के समापन में आई श्रोताओं इन्हीं कलाकारों के स्वर में सुनते हैं ये छत्तीसगढ़ी गीत।

गंगाराम सहारे, दयाराम ओबरे और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए जी डी मानिकपुरी, गंगाराम सहारे, दयाराम ओबरे और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी गीतों को।

हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 10:30 हुए हैं। समय श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम नए तराने का।

शुरुआत में आइए सुनते हैं इमरान अजीज़ और साथियों के स्वर में कौसर मुनीर की रचना, प्रीतम का संगीत है, फिल्म है बजरंगी भाईजान।

इमरान अजीज और साथियों के स्वर में कौसर मुनीर की रचना आपने सुनी। प्रीतम का संगीत था और फिल्म थी बजरंगी भाईजान। कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं शब्बीर अहमद का लिखा हुआ एक गीत। आवाजें हैं श्रेया घोषाल, हिमेश रेशमिया और साथियों की। संगीत हिमेश का है और फिल्म है बोल बच्चन।

कार्यक्रम में आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म बर्फी से लिया गया ये गीत। अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजें हैं, स्वादान किरकिरे के शब्द और प्रीतम का संगीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म का गीत आपने सुना, स्वर दिया था अखिल सचदेव ने, मान सिंह गुजराल की रचना थी और अखिल सचदेव का संगीत। इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने के इस अंक को देते हैं यही विराम और अब आइए जानते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर एक बार फिर से।
1: यातायात संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को उमा शंकर पांडे का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बिलासपुर

0: के लिए बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी संक्षिप्त प्रवास पर बिलासपुर पधार रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज दोपहर बाद 3:50 पर SECL हेलीपैड सरकंडा हेलीकॉप्टर से आएंगे, जहां से आप बतराई स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट 2026 में शामिल होंगे। तत्पश्चात आप यहां से पुनः SECL हेलीपैड सरकंडा आएंगे एवं हेलीकॉप्टर से शाम 4:55 पर गंतव्य हेतु प्रस्थान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रवास के समय सुगम और सुरक्षित यातायात के आशय से आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, अतः आप सभी से अनुरोध है इस समय आप अन्य वैकल्पिक मार्ग से आना जाना कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में, जिले के हर ग्राम हर कस्बे में अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़कों में कभी दो वाहन आपस में टकरा गए या आपस में दोनों वाहन रगड़ गए या कोई दो पहिया वाहन चालक किसी वाहन की ठोकर से सड़क में गिर गया। भले ही चोट ना आई हो, लेकिन इसी बात पर एक दूसरे पर दोनों वाहन चालक आरोप मढ़ते हुए भी सड़क में गिरे पड़े वाहन या अन्य कोई भी क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से तत्काल हटाने के बजाय भी सड़क में वाद विवाद गाली गुप्ता या मारपीट करने लगते हैं। इन दोनों ही पक्षों के वाद विवाद लड़ाई झगड़ा या मारपीट होने से सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग जाती है और निर्दोष लोग परेशान होते हैं। अतः ऐसे लोगों को इस संदेश के माध्यम से हिदायत है कि प्रयास करें कभी कोई दुर्घटना ना हो। यदि जाने जाने कभी कोई ऐसी स्थिति हो भी गई तो तत्काल सड़क खाली करें। ध्यान रहे, इस सामान्य दुर्घटना की तुलना में 20 सड़क रोककर यातायात बाधित करना अधिक गंभीर अपराध है, भारी पड़ सकता है। अतः सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर का पुनः प्रसारण। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11 बजने को ही हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण करेंगे।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी दोस्तों, चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। गायिका हैं जगजीत कौर, फिल्म का नाम है बाजार। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

और आइए अब सुनते हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में शहरयार की रचना, स्वर तलत अजीज का, और फिल्म का नाम है उमराव जान।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानिसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतवार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी लहेड़ी ने।

मतेह कार्यक्रम की आखिरी गजल मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है गजल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो कहने ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों ना आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय

मुख्य इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती है और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

0: फिल्म नया दौर में अभी आपने मोहम्मद रफी आशा भोंसले को सुना, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब की धुन थी ये। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन की मैं बात करूं तो आप जरूर मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन, बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म बनाई गई, जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: भाई रे
0: ईश्वर, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के हैं दो बीघा जमीन के लिए। शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला। क्या शानदार गीत है।

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं, आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते हैं एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी, राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और जरूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इंकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर ये अधिनियम रोक लगाता है। लेकिन जब बात चल रही है फिल्म की, तो फिल्मों में बाल श्रम को बहुत भी दर्शाया गया है।

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना, मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और SS वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

पैगाम फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ सुना। प्रदीप के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली। जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी चलाते हैं, और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज है और आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार के लिए जुड़ेंगे रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खनिज सचिव ने कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारणी घोषित की। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध रेत खनन पर सख्ती तेज कर दी है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने रेत आपूर्ति करने वाले 11 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने कहा कि रेत की आपूर्ति में कोई कमी न रहे और स्वीकृत खदानों से क्षमता के अनुसार उत्पादन कर आम लोगों को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त रेत देने के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देशभर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देशभर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 जून से 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ में कल से प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई है। अभियान के

0: पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए, जहां मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए। रायपुर जिले के कठिया गांव में आयोजित शिविर में भी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री इस अभियान की लगातार निगरानी रख रहे हैं। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य कल से शुरू हो गया है। ये अभियान 30 मई तक चलेगा, जिसमें प्रशिक्षित प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस चरण में आवास, परिवार और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़े 33 बिंदुओं पर डेटा लिया जाएगा। जिन निवासियों ने स्वगणना पूरी कर ली है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी स्वगणना आईडी को तैयार रखें और प्रगणक के आने पर इसे उनसे साझा करें। जिन परिवारों ने जनगणना का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें जनगणना करने वालों द्वारा घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना में शामिल किया जाएगा। ये जनगणना पहली बार डिजिटल साधनों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। प्रदेश के मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है, जबकि दक्षिण ओडिशा से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर अंधड़ और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन अंतर्गत गोंदिया स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के लिए 3 से 22 मई तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। गोंदिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर आधुनिक बैलिस्टिक ट्रैक बिछाने के इस कार्य के चलते बरौनी एक्सप्रेस और रायपुर इतवारी पैसेंजर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या उनका आवागमन प्रभावित रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खनिज सचिव ने कलेक्टरों को अवैध रेत खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारणी घोषित की और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं, शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा।

आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण

अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने

0: मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म का नाम है जागते रहो।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अन्नदाता। गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम।

0: एक जय घोष।
1: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमति का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलिल चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकर कर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतजार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले सफर का। तो चलिए, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरीले सफर पर, ठीक है। जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरीले सफर पर। लेकिन लेकिन लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के?

चलिए तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने।

दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ, आहा। और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? आपको क्या लगता है जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था काला पत्थर। जी हाँ, तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पत्थर फिल्म से कितनी और सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी हैं, आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं। बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ कुछ चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से उं, उं, उं, आहा, ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया, पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं। पान खाए सैया हमारो, अच्छा आपने ये गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं, शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है, परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है, और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही है वो कौन सी कलाकार है? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी मुश्किल है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे

फूल कहीं कोई चला, बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है, जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई, उसे समझना आसान तो नहीं है। आज सुरीला सफर आसान नहीं, लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है, जिसमें जिंदगी, रास्ते, बाजी, दीवाना, पैसा, चलना, फूल, कांटे, बाबूजी, दुनिया, अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं, पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का, या एहसान, या रास्ते पर रास्ते जाने वाली, दीवाने हैं दीवानों का न घर, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे, बहुत सारे गीतों को लिखकर भेजा है। लेकिन हम आपको बता दें, सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी सुना, लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सफर जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों, तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा, कहीं गाड़ी, कहीं कार, कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन, कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग, जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता, ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल, अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर, किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे हैं।

जी, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया के इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडक का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में। तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना।

तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी है जिसमें जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी हैं वो कौन हैं। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों की दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आंख गड़ा कर उसको देखा करते थे और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे न जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए।

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बाइस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर, जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंजर
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना? तो हम आपको बता दें दुश्मन फिल्म का

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबूजी दुनिया सचमुच एक तमाशा है। हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है। ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है, फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का। गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: बाबू आना, सुनते जाना।
2: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी।
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: थर थर, महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
2: ये सब है जाल।

ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, अरे जा जा जामू धो गया, तू जा जा, अरे जा जा जामू।

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।

0: బౌది బోల
1: బౌది
0: బౌది బౌది
2: जुमरू फिल्म का गाना था बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से? एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए में गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार, बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही है नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना

सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका, लूट ना जाना। बताइए, कभी आप लूटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए, फूल हैं तो कांटे भी हैं। कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा। हाँ।

0: जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत छिपा है। और अब आप दोस्तों को दिमाग लगाना है भाई, जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिखकर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्ले लिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर इबारत का अर्थ आप समझा पाए तो मैं कुछ लिख सकूं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो क्या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है, उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे, कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिखकर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है, इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं, आपको शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, आहा, अरे

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है। पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी क्षण भंगुरता पर आधारित है। क्षण भंगुरता दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रमजाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है, इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछोह सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका नष्ट होना तय है। जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब क्षण भंगुर लगने लगता है। जो चीजें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा पाने की लालसा रखता है, खोने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी भावनाएं, रिश्ते, सफलता सब क्षणभंगुरी तो हैं,

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है, फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना। जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षण भंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षण भंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षण भंगुरता हमें ये सिखाती है सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच 12वां पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवी के पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला

0: चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
4: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा

0: अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू करती है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
1: सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी या दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा

0: है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार, कहा अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था रानी रूपमती। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ

फिल्म नया दौर का गीत सुनिए, गायिका आशा भोंसले, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में हम आपको शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19650, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, और अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: हम पंछी एक डाल के। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आशा भोंसले और साथियों का गाया हुआ। गीतकार पीएल संतोषी थे और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध।

यह बस आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था मेरा सलाम। गीत को शिवान रिजवी ने लिखा और हाफिज खान ने संगीतबद्ध किया था।

ग्यावस्थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था जन्म जन्म की फेरी। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा था और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने। ग्यावस गीता दत्त की फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये था एस एच बिहारी का लिखा गीत, गीता दत्त की आवाज में फिल्म हिल स्टेशन से। और आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनते हैं।

तलत महमूद की आवाज में अभी आपने छोटे बाबू फिल्म का गीत सुना। कैफ इरफानी के बोल थे और मदन मोहन की धुन थी। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ये इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें। इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक और ये खत लिखने वाले हैं नुहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव, और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

मैं वसी किशोर कुमार के राना के गीतार थे अनजान और संगीतार थे परिशर्शन। इस गीत को सुनने के लिए आप लेगा गांव डाखोद रानसी पूरा खटक निर्मला देवी शंभु दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने, और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है। कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार, आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाहे गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ही कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए। हाँ। लेकिन आरपी फिलपोतिक जामली ने कहा साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: हाँ, आएंगे कैसे? वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहां से, चल चल। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा।
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
3: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
3: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
3: जी जी।
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है।
3: जी?
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
3: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
3: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटन एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करें।
3: मुआयना खास तौर से?
1: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरी लोबना के यहां गया था। मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
4: लेकिन मेयर साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना।
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब, हम तो राजधानी से पहले इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
1: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
3: जी,
1: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
3: जी,
1: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
3: जी। हाँ।
1: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
4: मेयर साहब
1: जी,
4: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ।
1: हाँ।
4: तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
1: जी।
4: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है। सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
1: वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
4: जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किच की आंखें हैं।
1: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ।
3: जरूर जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब।
1: मैं आप सबसे ये

0: बात कह रहा हूँ। खैर पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
1: जी।
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
1: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
1: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कराया देता हूं।
0: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें। अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप। और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए। अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
1: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं। बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगा दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं जज ल्यापकिन त्यापकिन
2: जी।
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
2: जी। हाँ,
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूं मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
2: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। आप भी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप। और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
2: जी,
0: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
2: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह हुआ ये कि बचपन में
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल लीजिए।
2: साहब मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
2: वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। हाँ, स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
1: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए
1: जी।
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए, आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता है, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा
1: जी। इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब, मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे। उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर, वो कम वक्त पढ़ाता खूब है।
0: आप इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
1: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाएं?
1: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
1: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम।

0: आ रखी
1: और
0: है।
1: मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
0: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
1: मुआयना, वैसे मुआयना है ना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
0: जी भेष बदल कर,
2: बदल कर
1: मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
0: जी,
1: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
0: कौन कौन कौन?
4: नमस्कार मैं,
1: क्या क्या नमस्कार? तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
4: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब किंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
1: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
4: ख्याल क्या है मेहर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
1: लड़ाई?
4: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला
1: है। तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर।
3: अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
0: जी जी,
3: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
0: जी
3: है।
0: हाँ, जी हाँ, ठीक कह रहे हैं।
3: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
4: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
3: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
4: जी हाँ समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
1: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
4: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
1: अच्छा?
4: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
1: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
5: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
1: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
5: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
1: जी।
5: हाँ छोड़िए, हाँ याद आया,
1: क्या
5: ये बताइए, क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
3: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेष बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जनरल सचमुच ही आ गए हैं।
1: हे भगवान,
6: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
7: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
6: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर, मेरा बोलना काफी है।
7: पर बॉब चिस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
3: ये आप दोनों महाशय हैं।
8: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
1: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
0: क्या हुआ डॉबचिंस्की? क्या मांग रहा है? अरे भाई क्या हुआ? क्या
1: खबर है? हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
8: हाँ, मैं और डॉबचिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
1: डॉबचिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो
8: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉबचिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
1: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
8: अरे जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
1: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
8: सुन लिया ना डॉबचिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुना। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोवकीन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
1: समोसे वाले की दुकान के पास।
8: हाँ समोसे वाले की दुकान के पास, लेकिन इसे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
1: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
8: हाँ फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की, इसने मुझसे कहा के मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
1: सूट बूट पहने हुए
8: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबीला गंभीर

0: जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो ना हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है। लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। दो हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग तल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
1: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
0: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा हो, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
1: कौन सा अफसर?
0: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर
1: क्या,
0: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
1: क्या? नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
0: वो कैसे हो सकता?
1: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की नहीं।
0: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
0: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
0: नंबर 4,
1: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी। और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
0: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
2: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंट की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
0: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गरीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का, मिश्का
3: जी हुजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
3: जी तैयार है।
1: प्रोहरात कहाँ है?
3: हुजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
3: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे, जल्दी जल्दी।
2: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
4: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
2: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से।
4: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर ये है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा।
5: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन
0: कौन है?
1: कौन?
6: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
5: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
6: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
5: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
6: जी बहुत अच्छा।
5: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
6: जी, मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
5: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं, डॉबचिंस्की तुम मेरे साथ।
0: जी बात, मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
5: समझदारी की बात करो बॉबचिंस्की, गाड़ी में 2 ही आदमियों की जगह।
0: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
5: अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए,
7: सुनिए सुनिए।
8: अरे पापा तो चले गए मम्मी।
7: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
8: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी।

0: हमें बुलाए क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
1: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
2: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
3: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलिस्टकोव के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
4: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने।
3: अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए, कुछ ना पूछिए। खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने, मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं, इतने जोर की भूख लगी है कि ओह मालिक आ गए। मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
5: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
3: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
5: क्या
3: मालिक? मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा, होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा।
5: उसकी शे मजाल की हमें खाना देने से इनकार कर।
3: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है, कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
5: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
3: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
5: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
3: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
5: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
3: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
5: इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए, यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो में बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
3: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया।
5: खाना?
3: जी
5: यानी कि खाना। खाना
6: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
5: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
6: जी जी
5: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
6: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
5: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई, मछली कलेजी कटलेट और वो अचार चटनी?
6: बाकी चीजें नहीं है।
5: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से गा उन्हें चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें।
6: अजीब ऊंचे ग्राहकों की

0: चिंस्की।
1: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने, मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
2: आसिफ वेटर को बुला लाओ।
0: जी अच्छा।
3: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है। और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रिकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एशियन टूनो।
0: हाँ।
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवघन उसका ये था फाइट कंपोजर एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं।
0: ओहो।
1: और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कुलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से। वो तो उन्होंने अपना इससे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ।
1: बाकी

0: खुद कर लेते थे सब, और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह, हाँ, उसमें हाँ. कई जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे. और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
1: जी.
0: और एक आई थी हमराई, रामन हाँ, सागर की
1: जी.
0: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन जागीदार,
1: जी.
0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर.
1: हाँ
0: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी.

0: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर।
1: हाँ
0: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
1: जी जी
0: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर।
1: अच्छा,
0: मतलब 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा।
1: हाँ,
0: ब्रिज तो आपको मालूम है छोटे नाले पर रहते हैं।
1: अच्छा,
0: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में।
1: ओहो,
0: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
1: जी
0: तीनों पीछे से तीनों भी क्रॉस करते पूरा।
1: अच्छा,
0: जंप करके। तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया।
1: जी, तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं इन दृश्यों को जोड़ना,
0: हाँ,
1: ये कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर।
1: अच्छा,
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट।
1: अच्छा,
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया।
1: अच्छा,
0: हीरो उधर से आ रहा है,
1: हाँ,
0: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते हैं वो
1: अच्छा,
0: कट में।
1: हाँ,
0: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया, उधर उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा,
1: हाँ,
0: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें,
1: ओके,
0: फिर उसके बाद ये कर लेते हैं। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
1: जी जी
0: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में।
1: हाँ,
0: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे। ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं।
1: हाँ,
0: और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका,
1: हाँ,
0: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
1: हाँ,
0: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो
1: अच्छा,
0: अपना कहानी में हो गया।
1: जी
0: वो
1: जी
0: शूट कर लेते,
1: हाँ,
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलकर अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो। तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर,
1: जी
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था
1: हाँ
0: उसका था, और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तरफ से अब्बास अली मुगल,
1: अच्छा
0: तो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे वो, हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहां से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा, तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो
1: हाँ
0: लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया
1: अच्छा
0: तो वो अलग शॉट रहता था, फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था, तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में,
1: जी
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल,
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी
1: मराठी फिल्म
0: मराठी फिल्म,
1: जी
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर, तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट, तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे, अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे,
1: जी
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था, तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ, तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी
1: जी
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी, तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था 16 नंबर में खत्म हो जाता था,
1: अच्छा
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो आप मुझे कहानी बताओ खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना, और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था भाई ये सीन है इसमें इतने शॉट है,
1: अच्छा
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती

0: थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया हो गया, और हम सीन दिख के दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता, तो प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा।
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 मार्च को खत्म किया
1: हाँ
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के, गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा।
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए। क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है, कहाँ खत्म करना है,
1: हाँ
0: बाकी तो सब था। और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे, तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा
0: 10 पिक्चर किया। मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड़ पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूं।
1: हाँ जी।
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर
1: जी
0: एक का, लड़की का भी रहता है। लड़के, लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले। जो जीवन संगनी है,
1: हाँ
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: अच्छी मिले तो वो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू।
1: क्या
0: ये
1: बात।
0: जिंदगी पिक्चर का गाना है,
1: जी जी
0: राजेंद्र कुमार वैजयंतीमाला का,
1: हाँ
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था
1: अच्छा।
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही
0: मुझे।
1: गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं,
1: जी
0: तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है?
1: सर, जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है
0: हाँ
1: जो कि गवर्नमेंट रिकनाइज है,
0: हाँ
1: तो
0: ओके,
1: उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो
1: वीडियो
0: एडिटर।
1: एडिटर
0: अच्छा
1: एडिटर
0: अच्छा अच्छा तो वो
1: वो
0: शॉर्ट में
1: हमारा
0: लिखा गया।
1: पूरा जो है ना,
0: हाँ
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ
1: वो सारे का एक फेडरेशन है, वो
0: अच्छा,
1: उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है। जैसे डायरेक्टर का
0: हाँ हाँ
1: IFDA नहीं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन,
0: अच्छा,
1: WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते
1: नहीं,
0: हैं।
1: हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं,
0: जी
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहां रजिस्टर करना पड़ता है आपको,
0: अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई
0: जी
1: ये पिक्चर का एडिटर मैं हूं, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था, तो
0: अच्छा
1: एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूं,
0: जी
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए
0: जी
1: हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते
0: तो
1: हैं।
0: आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में,
0: 78 में ही, शुरुआत में ही।
1: हाँ
0: जी,
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ
1: जो मेरा राजश्री में 1 साल पूरा हो गया था,
0: हाँ
1: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था। तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में ₹25 में हमको भर के कार्ड मिलता था,
0: जी
1: जो आजकल सब कार्ड बने हैं वो हम दिखाते थे, तो हमको लैब में जाने देते थे,
0: अच्छा,
1: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल वो
0: हाँ
1: नहीं था, तो वो हम दिखाते थे, हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में,
0: जी
1: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे ₹251 लिए थे
0: अच्छा
1: एसोसिएशन ने,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: उनको लेते हैं सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेना आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA, जो आप बोले ना
0: हाँ, AFE लिखा होता है।
1: AFE लिखा रहता है, तो
0: हाँ
1: वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है।
0: जी जी जी
1: देखिए
0: जी
1: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं, ये और
0: अच्छा
1: एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
0: हाँ
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है।
0: हाँ
1: जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था,
0: अच्छा,
1: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
0: चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोक,
0: जी
1: प्यार के साथ में नोक झोक जो होना जरूरी है।
0: हाँ
1: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं, हमारी
0: अच्छा,
1: लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे, तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
0: हाँ,
1: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी होगी पहचान।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: पहचान ना रूठो मेरी जाना इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: दिलीप जी एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं, एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी, जी।
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर,
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ,
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ,
2: तुम काम करते हमको मालूम नहीं, फिर
1: अच्छा,
2: क्या पैसा लेना है ले ले, एक कर ले।
1: अच्छा,
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा,
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए,
1: हाँ,
2: कैमरे में चिप्स आ गया। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी,
2: वो मैंने बनाई है माता जी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी।
2: तो मैंने भी क्या

0: एक कैमरा लिया,
1: अच्छा
0: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी।
0: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा
0: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ
0: वो हम फिल्म मशीन आते हैं एफसीएफ बोलते हैं,
1: अच्छा
0: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं,
1: अच्छा
0: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है। अभी
1: अच्छा
0: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी
1: हाँ
0: तो कैमरे में फूजी कलर, ईस्टमैन कलर, ओलो कलर रील आते थे
1: जी
0: चार सौ
1: जी
0: चार सौ फीट के।
1: हाँ
0: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, निगेटिव,
1: हाँ
0: निगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे,
1: अच्छा
0: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था,
1: अच्छा
0: नेगेटिव उधर ही रहता था।
1: हाँ
0: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 टेक 1 ऐसा करके आता था आवाज,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है वो
1: हाँ
0: मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट
1: अच्छा
0: का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये
0: फिर वो क्या
1: तरीका।
0: सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ
0: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ
0: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा
0: और उसका फिर रील बनता था, रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है,
1: हाँ
0: सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर,
1: जी।
0: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
0: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे,
1: जी
0: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे, पॉजिटिव मतलब जो हमने एडिटिंग हो गया
1: जी
0: उसके बाद में उस वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया, तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे, उसका
1: अच्छा
0: डबिंग करते थे, तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था। फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे,
1: अच्छा
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो 25 हो कोई भी हो,
1: अच्छा अच्छा
0: हीरो हीरोइन लॉ अपना विलन हीरोइन की माँ सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का। फिर
1: अच्छा
0: दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे हैं और हीरो चलते हुए आ रहा है, टक टक
1: हाँ
0: टक
1: हाँ
0: टक,
1: हाँ
0: ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको
1: अच्छा
0: डबिंग की तरह, और
1: हाँ
0: वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग ला के देता था, हम काट के उसको डाल देते थे। तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी।
0: अलग सा, उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल,
1: अच्छा
0: ये सब असेंबल होता था। और जो म्यूजिक वाले रहते थे, जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का,
1: जी
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जैसा
1: अच्छा
0: ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे,
1: जी
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे,
1: जी
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था,
1: जी
0: बहुत सारे लोग आए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक,
1: जी
0: पफ ये रहता है ना मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा, और म्यूजिक का भी ऐसा होता था साउंड का, वो सब बोलते थे उसको।
1: जी
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज के,
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्तानी में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था,
1: अच्छा
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे।
1: जी
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो, जो कि
1: अच्छा
0: फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ हाँ
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो तो उसमें जो साउंड

0: एडिटिंग का काम किया है, डेविड नाम है, डेविड पॉल,
1: अच्छा
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग, तो वो हम देखे थे तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे,
1: जी, जी।
0: नाम से कुछ नहीं मगर क्या है कि लोग भी जानते थे
1: हाँ।
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को यार तेरी पिक्चर लगी है उधर तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से,
1: अच्छा
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे
1: जी जी।
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में
1: हाँ।
0: और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहां पर पढ़ता था
1: अच्छा
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से
1: हाँ।
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे कॉलेज के फ्रेंड थे
1: जी।
0: वो पिक्चर देख रहे थे
1: हाँ।
0: उन्होंने मेरा नाम देखे थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का मतलब ज्यादा एजुकेटर पढ़ा नहीं है
1: हाँ जी।
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है बॉम्बे का अलग है तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे
1: हाँ।
0: 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए
1: हाँ।
0: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है चलो पिक्चर हमको फ्री में पिक्चर रहती थी
1: जी जी। तो ये आपके गांव के लोग आपके घर के लोग आपके साथ पढ़ने वाले लोग इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा
1: बिल्कुल
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा मैंने प्यार किया का जो कि बिरहा गीत है कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया ऐसा गाना है
1: हाँ जी
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था वो हाँ। इसकी लोक गायिका है बिहार की
1: जी जी
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी,
0: अच्छा
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है
0: हाँ
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवास है,
0: जी
1: इंटरनेशनल लेवल पर है।
0: जी जी
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं,
0: जी
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना, पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो
0: जी
1: हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका
0: जी
1: बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है।
0: जी
1: मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है। क्यों? तो उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना,
0: हाँ जी
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड है, उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज्यादातर वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है। मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है
0: अच्छा
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज्यादा चलता है। तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा
1: तो उनका क्या रहता है कि फर्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में वो जैसा पिक्चर

0: कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका, तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
1: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं, आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन?
0: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
1: जी,
0: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं,
1: हाँ जी
0: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए,
1: जी
0: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका, ऋषिकेश मुखर्जी तो आठ फिल्म की तरफ जरा झुकाव था उनका
1: जी,
0: और बनाते थे अच्छे पिक्चरें, जैसे डेविड धवन है कमर्शियल में सक्सेस हो गए, यन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है, ये भी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
1: जी,
0: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है जो दरक परिवार,
1: अच्छा
0: दरक परिवार ही नहीं, जहाँ महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है मूसा माता
1: जी,
0: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिली वो।
1: अच्छा,
0: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में,
1: अच्छा
0: मूसा माता का, तो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
1: जी जी,
0: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सपरिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई कि माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहां से कल्पना आई, मगर ओ अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना पॉसिबिलिटी नहीं थी, हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था, तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा बहुत माहिती लेकर, मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
1: जी,
0: उनके बारे में
1: जानकारी
0: ली
1: जी,
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
1: अच्छा,
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
1: जी,
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है, और वो शॉर्ट फिल्म है।
1: अच्छा,
0: तो वो हमने किया है, और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, ये इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है,
1: अच्छा
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया, तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया है जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए, तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए हैं और ये करते रहेंगे
1: जी।
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का,
1: हाँ जी,
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ,
0: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता
1: जी जी जी,
0: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है, पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे,
1: अच्छा
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे, क्यों, तो लोगों का सोच अलग हो गया
1: जी,
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते थिंकिंग बड़ी हो गई,
1: हाँ,
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना दे दिया के पर आंचलिक उपन्यास था
1: जी,
0: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है, वो पिक्चर ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
1: हाँ,
0: उसमें शूट किया है, वो पिक्चर में एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
1: हाँ,
0: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ
1: जी,
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया, तो क्या रहता है कि अभी इम्पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया,
1: अच्छा,
0: कि तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा, पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे में पिक्चर बिक जाती थी, मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गए, अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनी।

0: यानी ये कर लिया है, तो ये दौरान तो मैं बना बना ही
1: जी
0: नहीं सकता ना सोच सकता।
1: जी
0: सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था,
1: अच्छा जी
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, उड़ूस वाले पहला नीलानी ने ये किया,
1: जी
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे, पिक्चर
1: अच्छा जी
0: चलती थी, अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे,
1: हाँ
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा
1: तो
0: है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर
1: हाँ
0: उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है
1: हाँ
0: उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में,
1: जी
0: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते आते थे, बोले क्यों देखा उसको, तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर, तो
1: अच्छा
0: कॉलेज में मैं गाने भी गाता था,
1: हाँ हाँ
0: कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं
1: ओह
0: गुस्ताखी माफ, बोल के मैं
1: गुस्ताखी
0: भागते हुए नीचे आ गया, मुझे
1: माफ
0: लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे, तो
1: अच्छा।
0: वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई, और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था, तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या, कुछ नहीं बोले, वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना ले मुझे,
1: क्या बात है, तो
0: ये
1: वही
0: गाना
1: गीत
0: मैं सुनना चाहता
1: सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए। हमारे श्रोताओं को बताएं, आपके यहाँ आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत
1: भी
0: बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला और बहुत मैं आज खुश नसीब हूँ कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी एक गीत सुनिए, एक गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमर कोट। प्रायोजक हैं सी

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सेमई, सिंघरा, बोझा, चंदरपुर, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बंसीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये चोरकी पानी, बरडाण, दांती ढाब, बरवाली, कंडराजा, धनेरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, बाला लोंगरी, चरईमारा, रानी कोम्बो, बिलासपुर, बंदरचुआ, लोढ़ा आम्बा, डोडा पानी, कुदरा झरिया, साजा पानी, सीता पाकेर, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और लेलुंगा में हाथियों की कुल संख्या 95 है। ये प्रेमनगर, दुलियामुड़ा, पोटिया, रुपुंगा, बोजिया, बेहरामार, बनहर, औरानारा, सिंघी छाप, गलीमार, कमोसिन डांड, आमा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 38 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये गंधरा चुआ, अचानक पाली, नरेश नगर, सुंदरगढ़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 38 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, अमली, गौरमुंड, बेसराझर, कटफार, छाता पानी, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास

दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पीकू से। अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल की आवाज है, गीत और संगीत अनुपम रॉय का ही है। तो लीजिए सुनते हैं पीकू का ये गीत।

गुड्डू रंगीला। इस फिल्म से ये गीत हमने आपको पहुंचाया। अमित त्रिवेदी और दिव्या कुमार की आवाज़ थी, इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत और अमित त्रिवेदी का संगीत।

पीकू फिल्म का ये गीत था, अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दिव्या कुमार की आवाज में, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ और अजीम दयानी का संगीतबद्ध किया हुआ। फिल्म है लव यात्री।

कबीर सिंह फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, अखिल सचदेवा का गाया हुआ, तुलसी कुमार का लिखा हुआ था। आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: ਬਣ ਕੇ।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फुकरे फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, सोना महापात्रा की आवाज़ और मुन्ना धीमन का गीत राम संपत का संगीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटते हैं कार्यक्रमों की अगली कड़ी में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा। फिल्म अब्दुल्ला से आशा भोसले की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था, आर डी बर्मन का संगीत, और आप सबकी फरमाइश पर हमने वो गीत आप तक पहुंचाया। मेहरनगर उमखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस, एकांश गवांडकर, ऋतिक मल्होत्रा, टी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, ये हैं मोहाली चंडीगढ़ से हमें भेजते हैं। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। लखनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश कुमार, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से वसीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और

हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहारकर, निर्मला विशाल नुहारकर। मगरलोट से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका, रानी चंदन, गजेंद्र कुमार हैं इनके साथ, हेयांश कुमार भी साथ में हैं। कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दड़े। कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत। और ये हैं मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू रोहासी से हैं। नथाना पंजाब से हमें ईमेल करते हैं राजेंद्र शिंदा, जसविंदर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से हैं इंद्रबान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बलूचा, मधु सागर बलूचा। सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा हैं। और पोटिया कला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। पटियाला से है, माफ़ कीजिएगा, ये शहर का नाम पटियाला है। और यवतमाल से इनके साथ हैं सरला, विजल, रोशनी, प्रियांशी, मनवर। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। और झारखंड से हमें ये ईमेल करते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु सातु, अर्पणा आनंद, सत्यम आनंद। आप सबकी पसंद पर हमने ये गीत आपको पहुँचाया। अब अगले गीत की बारी है और वो रहा ये युग पुरुष से हम आपको सुनवा रहे हैं। उत्तम सिंह का संगीत है, रविंद्र साठे और राजेश रोशन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है, प्रीति उत्तम सिंह का आवाज़ है।

युग पुरुष से अभी आपने सुना प्रीति उत्तम को, मजरू का लिखा हुआ गीत, राजेश रोशन का संगीत। और जो ईमेल हम तक पहुंचे हैं वो हैं, कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे, प्रशांत जाधव, सचिव संचित प्रथमेश प्रणाली और सर्वदा देशमुख। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टैमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशी, तुलसी और दिशा गोस्वामी, इनके साथ कीर्तनपुरी गोस्वामी नरगोड़ा से हमें भेजते हैं। राजकुमार प्रमोद, पुष्पेंद्र कुमार दौड़ी हैं हिसार से, महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं, मुसर्रत जहानाद, तऊत फरहान, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूर नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े और हनुमान उत्तम दमदाड़े जमदाड़े, और पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत सिंह जोड़ा, करणवीर, करणदीप, कुलदीप और एकम अभिजोत। गुजरात से हमें ये ईमेल करते हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश लिखते हैं, रुचा गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। ये वीरगाम राजकोट से हमें भेजते हैं, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। ये कुछ ही मेल और हैं जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं इसी गीत के साथ। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां मुकद्दर का, ये अडार नानघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, रिमझिम गुप्ता, समरडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है तेजाब फिल्म से, अनुराधा पौडवाल अमित कुमार की आवाजें हैं, जावेद अख्तर का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को इन लोगों ने, फरमाइशकर्ताओं ने ईमेल के माध्यम से सुनना चाहा है। वो है अजीत पॉल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा हैं, ये सरगुजा से हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं, अब्दुल कलाम रोइन, अब्दुल सलाम, पीपर लोट सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश हैं, पहंदा पलारी से नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन हैं, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार। ये हैं बालोद से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। और अगला ईमेल दिखाई पड़ रहा है नेपा नगर का, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलबेन और राजेंद्र शाह का। दत्रेंगी भाटापारा से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। और धाड़ी नांदूर महाराष्ट्र से हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल।

और यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से हमें ये ईमेल करते हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, ये हैं टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ति थांदी, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी इनके साथ हैं, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया हमें ये ईमेल करते हैं पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। राजकोट का ईमेल है जूली जगदीश का, गुजराती प्राची और प्रवीण कुमारी का। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू हमें ये भेजते हैं हांसी से। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और धुर्राभाटा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। ये हैं नईवाल जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा हैं। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी। भिलाई से अशोक, श्याम कुमार, प्रमीला, आयमा, आसमा, श्याम कुमार हमें भेजते हैं। गंडई टिकरी पारा से हैं जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन। कुमार हेडार सहारनपुर से हैं सैयम मसरूम, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। लूतरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श अतिका। और ये है ठकुरावाला से, लोहगढ़ ठकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुलराम और अविराज सिंह। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर तेजाब फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं फिल्म आपकी कसम से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत और आरडी बर्मन का संगीत। और फरमाइशकर्ताओं के नाम ये हैं: बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगनिया, नमन अपार ढींगिया, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम अजीज ये हैं, तीव्रता डबरीपारा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया योगेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन, सोहाद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी।

लक्ष्मण थदनावी। बगेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक शौर्य नामदेव। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता। पुतकी कला कवर्धा से हैं राधेश्याम पांडे, वीणा विनय, शंकर पांडे। महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख और साजिद शाहिद। नानघाट कातलबोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रीतु राजपूत। डोगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनित, सोनम वर्मा। बक्सर हिसार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित महेश साहू। आइए आपकी पसंद पर लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज से सजा फिल्म आपकी कसम का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

ये शाम 6:20 से हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको कार्यक्रमों की जानकारी दे दें और पहले सुन लेते हैं ये संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें, 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें गोट बात का विषय होगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन। 7:30 पर हम सुनेंगे किसान वाणी, इसमें आज की बात का विषय होगा फसलों में रोग प्रबंधन। साथ ही भेंटवार्ता के क्रम में उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व को श्रीमती प्रियंका सिंह सिंगर, ग्रामीण विस्तार उद्यान विस्तार अधिकारी, हमें बताएंगी और इनसे बातचीत करेंगे महंगू भैया। सुगम संगीत सुनेंगे 8:00, कलाकार होंगे गुलाम अली। 8:15 पर होगा कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 अंग्रेजी में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे। विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम 9:15 से करेंगे।

0: कर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रमों की जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं, आइए अब कल के कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे 6:05 पर। सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर जानकारी। 6:45 पर सुनिएगा चिंतन, विषय होगा कर्तव्य पथ। कल सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी का अनुप्रसारण किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम के तहत डॉक्टर के साथ कार्यक्रम अंतर्गत त्वचा रोग विशेषज्ञ पर जानकारी दी जाएगी सुबह 7:30 पर। सदाबहार नगमे हम प्रसारित करेंगे 7:40। पर छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा। कल आओ बच्चों कार्यक्रम सुनेगा सुबह 10 बजे, जिसमें हंसी हमारे जीवन की सबसे सरल और अनमोल खुशी है विषय पर सामयिक चर्चा की जाएगी और आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस की खुशी में बच्चों के संदेश और प्रस्तुति का प्रसारण होगा। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम विवरण था, 6:10 हुए हैं। अब जुड़ते हैं रायपुर से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार के लिए।
2: समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। नारायणपुर जिला में आज आईडीला निष्क्रिय करतखानी विस्फोट होले, कांकेर जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 4 जवान मन शहीद हो गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी डहरले नीट के परीक्षा काली 3 मई के कराए जाही, एखर बर प्रदेश के सबो जिला में परीक्षा केंद्र बनाए गए हे। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के 1-2 जगह में गरज चमक के संग वर्षा होए के संभावना जताए हे। अब समाचार विस्तार ले। नारायणपुर जिला में आज आईडीला निष्क्रिय करतखानी विस्फोट होले, कांकेर जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 4 जवान मन शहीद हो गए। पुलिस ले मिले जानकारी के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में कांकेर और नारायणपुर जिला के सीमा में डी माइनिंग एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन पर जवान मन के टीम ला रवाना करेगी रहीस। यही दौरान आईडीला निष्क्रिय करे के बेरा अचानक विस्फोट होगी। एकर चपेट में आएले इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी।

0: कांस्टेबल कृष्णा कोमरा और कांस्टेबल संजय गढ़पाले हा मौका च मा शहीद हो गिन। उन्हें घटना में घायल हुए कांस्टेबल परमानंद कोमरा ला इलाज बर रायपुर लाए गए रहिस, जहां इलाज के दौरान उनकर मौत हो गई। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी यह बताएं कि आत्मसमर्पित माओवादी मन ले मिले जानकारी और दूसर इनपुट के आधार में हाल के महीना में बस्तर संभाग में बड़े संख्या में आईडी बरामद करके निष्क्रिय करे के कार्रवाई चला थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आईडी विस्फोट में चार जन जवान मन के शहादत में दुख जताई है। उमन की हिन की प्रदेश सरकार शहीद परिवार मन संग मजबूती संग खड़े है। उनकर साहस और बलिदान ला हमेशा सुरता राखे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश में हाल में हुए क्रूज हादसा के घटना ला देखत छत्तीसगढ़ में चलत सब वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि के सुरक्षा व्यवस्था के समीक्षा करत सुरक्षा नियम के पालन कड़ाई लेकर के निर्देश दीन है। ओमन कहिन की जन सुरक्षा के मामला में कोनो भी प्रकार के लापरवाही ला बर्दाश्त नहीं करे जाही। ओती मुख्यमंत्री हा बेमेतरा जिला के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल में बने सीसी रोड के क्षतिग्रस्त होला गंभीरता ले लीन है और किहिन की ओ सीसी रोड के तकनीकी परीक्षण करके सही स्थिति के आकलन करे जाए और निर्माण में लगे सामग्री काम के गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था के जांच करे जाए। जनगणना 2027 के पहली चरण में छत्तीसगढ़ संग्रह 6 ठन दर्ज में मकान सूचीकरण और मकान के गणना के काम काली ले शुरू हो गए है। प्रशिक्षित प्रगणक मनहा घर घर जाके जानकारी सकेलत हैं। यही कड़ी में जनगणना काम के पहले दिन बस्तर जिला के तोकापाल तहसील के ग्राम गाटम में प्रगणक हा अपन कामला पूरा कर लीस। दूसर कोती रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए 44 जन कर्मचारी मनहा गैर हाजिर रहीन, जौन मनला नगर निगम आयुक्त हा कारण बताओ नोटिस जारी करे है। उन्हें जसपुर जिला के प्राथमिक शाला सरहा पानी के सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला ला लापरवाही बरते के आरोप में निलंबित कर दे गए है। जनगणना के काम पहली गांव डिजिटल माध्यम ले कराए जावत है, जौनहा 30 मई तक चलही। राज्य सरकार हा अवैध रेत खनन में सख्ती तेज कर दे है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद हा रेत आपूर्ति करैया 11 ठन जिला के कलेक्टर मन संग वर्चुअल बैठक में स्पष्ट निर्देश दे हैं कि अवैध खनन परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नीति के कड़ाई ले पालन हो। उमन कहिन की रेत के आपूर्ति में कोनो कमी झन रहा है और स्वीकृत खदान ले क्षमता के अनुसार उत्पादन करके आम लोगन ला उचित दर में रेती देवाए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही मनला रॉयल्टी मुक्त रेती दे जाए के निर्देश के घलो कड़ाई ले पालन करे बर कहे गए है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर रहाले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए बखत के अंक में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैंने आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्र सरकार हा स्वदेशी तकनीक के उपयोग करत नागरिक मनला आपदा के सूचना तुरते दे बर सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू करे है। ए प्रणाली के परीक्षण करे बर आज मंझनिया कुन करीबन 12 बजे मोबाइल मा सायरन के संग एक ठन सूचना भेजेगीस। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखे रहिस सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। ये संदेश परीक्षण बर है, तेखर सेती जनता ला एमा कोनो प्रतिक्रिया दे जाए के जरूरत नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहिन कि यह संदेश ले नागरिक मनला घबराए की जरूरत नहीं है। यह भारत के नवा मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली के परीक्षण संदेश है। ओमन कहिन कि एला दूर संचार विभाग हा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मदद ले सेल

0: ब्रॉडकास्ट तकनीक के उपयोग करके विकसित करे हे। बलरामपुर जिला में सामरीपाट थाना क्षेत्र में ग्राम भूताही में आज नदी में नहाए वर्गे दूजन लैका मन के डूबेले मौत हो गए। मिले जानकारी के अनुसार 5 और 6 बच्छर के दूजन लैका मन हा अपन संगवारी मन संग गांव तीर के नदी में नहाए वर्गे रहीन। यही दौरान दोनों लैका मन हा गहरा पानी डहर चल दिन। सूचना मिलते साथ गांव के लोगन मन मौका में पहुंचिन और दोनों जन लैका के शवला नदी ले बाहर निकालिन। पुलिस मामला के जांच करत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी डहर ले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट काली 3 मई के कराए जाही। एकर बर प्रदेश के सबो जिला में परीक्षा केंद्र बनाए गए हे। परीक्षा के सफल संचालन बर सबो केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षक मनला निर्धारित मानक के पालन निश्चित करे के निर्देश दे गए हवय। परीक्षा के बेड़ा मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक रही। परीक्षार्थी मनला बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश के अनुमति दे जाही। एकर बाद कोनो भी परीक्षार्थी ला प्रवेश नहीं मिल सकी। राजधानी रायपुर में अवैया 10 और 13 मई के होवैया आईपीएल मैच के टिकट के बुकिंग काली 3 मई ले शुरू होही। मैच के टिकट सिर्फ आरसीबी के आधिकारिक वेबसाइट और ऐप में ही मिलही। खबर के मुताबिक 10 मई के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के और 13 मई के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होही। दोनों मैच संझा 7:30 बजे ले शुरू होही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के एक दो जगह में गरज चमक के संग वर्षा होए के और कुछ एक जगह में अंधर चले के और आकाशीय बिजली गिरे के संभावना जताए है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा ले मन्नार की खाड़ी तक एक चंद्रोणिका बने हैं। एकर प्रभाव ले प्रदेश में बदली बारिश के संभावना बना थे। ओती सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में आज मंझनियाबाद अचानक मौसम के मिजाज बदलिस और तेज हवा संग वर्षा होगी। अब थोरकुन समाचार सार मा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 ले लिखित परीक्षा के समय सारणी घोषित कर दे है। आयोग डहर ले जारी सूचना के अनुसार परीक्षा के आयोजन 6 जून ले 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केंद्र में करे जाहे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम्हा काली नवा रायपुर में राखे गए कार्यक्रम में प्रदेश के 3,556 बीज उत्पादक किसान मनला 8 करोड़ रुपया ले ज्यादा के प्रोत्साहन राशि उनकर खाता में ऑनलाइन भेजिन। और दुरुक पुलिस हेरोइन के तस्करी करत 5 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करे है। इंखर मंत्री ले करीबन 21 ग्राम हेरोइन बरामद करे गए है जेखर कीमत करीबन 1,69,000 बताए जावत थे। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। नारायणपुर जिला में आज आईडी ला निष्क्रिय करत खाने विस्फोट होए ले कांकेर जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 4 जन जवान मन शहीद हो गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी डहरले नीट के परीक्षा काली 3 मई के कराए जाहे। एक खबर प्रदेश के सबो जिला में परीक्षा केंद्र बनाए गए है। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के एक दो जगह में गरज चमक के संग वर्षा होए के संभावना जताए है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 MHz पर। 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं ईमेल करें गीत सुनें।

कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ है, साहिर का लिखा हुआ गीत, आर डी बर्मन का संगीत है। और जिन श्रोताओं ने इसे पसंद किया है वो हैं कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, अनंता भगत, अरणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत हैं मस्तानपुर से, और ये हैं सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड, चंद्रकला रेवाड, दिल्ली से हैं आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई, और संबलपुर कांकेर से है फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, ये हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईम अब्बासी, निगहत

विजय पथ में आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू को। फरमाइशकर्ताओं के नाम ये हैं, जमशेदपुर से हरजिंदर भाटिया, एंजल पप्पू भाटिया। देगलूर जिला नांदेड़ से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। तेलंगाना से हैं मोहम्मद बुरहाउद्दीन। जलंधर से संदीप जटोलिया, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी हैं मुंबई से। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैवले गवांडकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश सुमित गवांडकर और धनी गवांडकर। जलंधर से मीना कौर मन्नत और मन्नत नूर। यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा श्रव्या रामटेके, सियाराम चुवावराम, सूरज बोरकर, नारायण यदू, भुवन कामरी, बचकामल, मोतीलाल यादव। भाटापारा से हैं ओवेरी भाटा, भाटापारा से अनीता साहू, वीना साहू, मोनिशा साहू। खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक और उमर डावर, राजेंद्र कटारे। ये हैं जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल और योगेश दीपक पूजा खटक। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्रिशूल से। लता मंगेशकर के साथ यशुदास की आवाज़ है, साहिर का लिखा हुआ गीत और खयाम का संगीत है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आपको याद दिला दें कि ग्राम सभा में आज का बेरा के गोट का विषय होगा राष्ट्रीय आजीविका मिशन, और किसानवाणी में भेंटवार्ता के क्रम में हम उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व पर श्रीमती प्रियंका सिंह सिंगर से बातचीत करेंगे। वेट करता होंगे महंगू भैया। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रायपुर से और सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान

0: उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से 4 जवान शहीद। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुई क्रूज हादसे की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में संचालित वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल 3 मई को आयोजित की जाएगी। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से 4 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के 3 और बस्तर फाइटर्स का 1 जवान शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर डी माइनिंग एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन के लिए जवानों की टीम रवाना की गई थी। इसी दौरान आईईडी को निष्क्रिय करते समय अचानक विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में आने से 1 इंस्पेक्टर और 2 आरक्षक मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य आरक्षक ने रायपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों से मिली जानकारी और अन्य इनपुट के आधार पर हाल के महीनों में बस्तर संभाग में बड़ी संख्या में आईईडी बरामद कर निष्क्रिय करने की कार्रवाई चल रही है।
6: जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सीमावर्ती आदरार क्षेत्र अंतर्गत जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे, आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे, उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय गढ़वले, आरक्षक कृष्ण कुमार स्पॉट में हमारा तीनों का मृत्यु हो गई थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट की गई थी रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान उनका भी मृत्यु हो गई थे। इस प्रकार आज के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारा 4 साथी है वीरगति हुआ है।
5: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईईडी विस्फोट में 4 जवानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और दृढ़ता से खड़ी है, उनका साहस, समर्पण और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
7: फीडबैक के आधार पर डंप रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है, उसमें एक्सप्लोजिव था, प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी जबरदस्त विस्फोट उसमें हुआ और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक निरीक्षक

0: तीन आरक्षक शहीद हुए हैं। बहुत दुख है, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्यप्रदेश में हाल में हुई क्रूज हादसे की घटना को देखते हुए छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जन सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य होगी। मुख्यमंत्री ने धमतरी और कोरबा सहित अन्य जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिन स्थानों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराया जाए। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य कल से शुरू हो गया है। प्रशिक्षित प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनगणना कार्य के पहले ही दिन बस्तर जिले के तोकापाल तहसील स्थित ग्राम गाटम में प्रगणक ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। दूसरी ओर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी में लगाए गए 44 कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नगर निगम आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं जशपुर जिले के प्राथमिक शाला सरहा पानी के सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जनगणना पहली बार डिजिटल साधनों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। यह कार्य 30 मई तक चलेगा। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। राज्य सरकार ने अवैध रेत खनन पर सख्ती तेज कर दी है। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने रेत आपूर्ति करने वाले 11 जिलों के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने कहा कि रेत की आपूर्ति में कोई कमी न रहे और स्वीकृत खदानों से क्षमता के अनुसार उत्पादन कर आम लोगों को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रॉयल्टी मुक्त रेत देने के निर्देशों का भी सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल 3 मई को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल में निर्मित सीसी रोड के क्षतिग्रस्त होने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से फोन पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले के सामरीपाट थाना क्षेत्र में ग्राम भुताही में आज नदी में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 5 और 6 साल के दो बच्चे अपने अन्य साथियों के साथ गांव के पास स्थित नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। सूचना मिलते ही कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को नदी से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे के संबलपुर मंडल के बलांगीर संबलपुर सेक्शन में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित 4 पैसेंजर गाड़ी 4 मई तक रद्द रहेंगी। इनमें बिलासपुर टिटलागढ़ बिलासपुर और टिटलागढ़ रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर शामिल हैं। इसी तरह बिलासपुर जोन के तहत गोंदिया स्टेशन पर अधोसंरचना विकास के लिए कल से 22 मई तक 20 दिनों का मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान बरौनी एक्सप्रेस और रायपुर इतवारी पैसेंजर जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें या तो रद्द रहेंगी या उनका आवागमन प्रभावित रहेगा। साथ ही टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 3 से 22 मई तक तथा रायपुर इतवारी रायपुर पैसेंजर 3 से 23 मई तक रद्द रहेगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल में भिलाई भिलाई नगर के बीच रेल मरम्मत कार्य के लिए खुर्सीपार फाटक रेलवे संपार में सड़क पर वाहनों का आवागमन आगामी 4 मई तक बंद रहेगा।

राजधानी रायपुर में आगामी 10 और 13 मई को होने वाले आईपीएल मैच की टिकट बुकिंग कल 3 मई से शुरू होगी। मैच के टिकट केवल आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियंस तथा 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बदली बारिश की संभावना बन रही है। उधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 जून से 9 जून तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 10 मई को आयोजित की जाएगी। और दुर्ग पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 21 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,69,000 रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर जिले में आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से 4 जवान शहीद। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुई क्रूज हादसे की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में संचालित वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल 3 मई को आयोजित की जाएगी। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के एक दो स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। इसमें कलाकार होंगे गुलाम अली और रजनीगंधा। कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:15 पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें।

आज का अर्जुन। इस फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ें, अनजान का लिखा हुआ गीत है, बप्पी लहरी का संगीत है। और इस गीत के लिए जो फरमाइशें हमारे पास पहुंची है, ईमेल हमारे पास आए हैं, वो ये हैं। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती, सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल है, जमानिया गाजीपुर से हैं, सुभाष गोदरा, विमल, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदरा हैं, फालजिका पंजाब से, जोधपुर राजस्थान से हैं, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष, और डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित टांगिया नारंग, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार हैं, बुल्ढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से, जनकपुर से हैं सहारनपुर जोन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलीस, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश,

रेशमा साहू है, आपके बठेना से हैं, परमेश्वरी साहू और राजपति आपके साथ हैं, नाईवाल हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु, राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण, तेलंगाना से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और रहीम मुन्ना, जावेद शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा हैं गुमला झारखंड से हैं, और पानीपत से हैं नरेश मोहोत्रा, लक्ष मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत, प्रमिला पुष्पराज, ऋषभ मराबी। आइए आप सबकी पसंद पर गीत को आगे बढ़ाते हैं, जिसे आपने पसंद किया है फिल्म आज का अर्जुन से।

ये गीत था आज का अर्जुन फिल्म से, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ें थी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जिद्दी से, मन्नाडे और गीता दत्त की आवाज़ है, हसरत का लिखा हुआ गीत और एस डी बर्मन का संगीत। फरमाइश के लिए जो ईमेल हम तक पहुंचे हैं वो ये हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित आहूजा। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया अयान हैं धनौरी तेलीवाला से, और निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर। प्रभा देवी सेन, लक्की सेन, विक्की सेन, नानू रविंद्र, नौर रौनक सेन, पवन कुमार सेन गंडई पंडरिया से हैं, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, रसीड़ा, कलतरा से हमें ये भेजते हैं। इंदौर से हैं ललिता गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और नारायण खर्चे। आइए आप सबकी पसंद पर गीत पहुंचा रहे हैं फिल्म जिद्दी का।

0: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आन मिलो सजना से। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गीत के लिए जो फरमाइशें हमारे पास ईमेल के माध्यम से आई हैं वो ये हैं। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, बाबूलाल दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती दिल्ली से हैं। छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जाटव, डॉली कबीर जाटव और देव शंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से है दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज मरकाम। रजौनी जिला महोबा बुलंद खंड उत्तर प्रदेश से हैं, ये हैं उदयबान पाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांशी बघेल। और अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया यादव हैं पैठन से हैं। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा प्रांजल चंदन हैं। और जालंधर से संदीप ज्योति मन्नत, भारत मक्कड़ और कमल सहानी। मुरादाबाद दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद और इसरार और नरगिस खातून। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तानवी, सोनी मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह है मुरादाबाद दुल्हापुर से। ये हैं सुरेश नारंग, अंशु नारंग, सोनाली नारंग सहारनपुर से हैं। और गुरकीरत राहुल, शब्द गुरकीरत राहुल, प्रियंका मन्नत, जयप्रकाश राहुल, रवि कुमार, रंजीत कौर हैं अंबाला से। पुरानी भिलाई टीम चरोदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीद्दीन दीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। और राजिंदर सिंह, ओबेराय, पिंटू दीवाना जनकपुरी से हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया हैं। जमशेदपुर का ईमेल हमें मिल रहा है अपूर्व सिंह, अनुपम सिंह और राकेश कुमार का। नागर कोहरा राजनांदगांव से हमें ये ईमेल भेजते हैं बबलू साहू, जामनी देवी और प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। और महाराष्ट्र का ईमेल हमें दिखाई पड़ रहा है वो है रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई का। भागलपुर से ईमेल करते हैं अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साह, टिंकू मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश कुमार साहू। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, वसुंधरा काले। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, आरव खुराना, एसपी पप्पी। सहारनपुर से आशु मोची। नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी हैं कस्बा गुनौर से। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना वंडलकर, विविधा वंडलकर। आप सबकी पसंद पर हम पहुंचा रहे हैं ये गाना।
1: तो हम चलते हैं।

बिल्कुल अब चलने की बारी है क्योंकि ये आखिरी गीत था। हम कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। 7:20, आइए चलते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा के सुनैया जम्मो संगवारी मनला नंदू भैया के राम राम जय जोहार है जी। और देखो संगवारी हो आत रहे तो पानी जौन है तेन हर छिटी छिटी गिरे लगी से संगवारी हो घाम हर तो अब बड़े जनात रहीस फिर हमन ला जौन पानी है हवा गर रहे हो मैं सावधानी रखना है अपन संगे संग जम्मो जौन पशुपालन करथन तेकर और फसल जौन लेथन ओकर संगवारी हो और ज्यादा चेत रखे बर पड़ते कि एकर लेना कीड़वा मकोड़ा आए के डर रही थे तो और दवाई जौन पानी है ओला छींचे के बेरा घलो हमन ला चेत रखे बर पड़ते और हमन चेत रखीन के

जौन हमर जीविकोपार्जन के साधन आए ओकर तो बढ़िया रहते संगवारी हो अक्तहा दू पैसा कामा ले आए तो बने लगते जेकर ले हमर जौन आमदनी है तेन हर बढ़त जाते और रोजी रोटी हर बढ़िया ले चलत जाते संगवारी हो। तो इसने संगवारे हो हमन गोठ बात करबो जौन राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में। तो एकर बहुत कन लाभ हवे संगवारी हो जेकर ले का है गरीब मनखे हवे जौन गरीब परिवार है ओला संगठित करना रही थे रोजगार के बढ़िया अवसर बढ़ाते और महिला मन ला सशक्त बनाते कौशल विकास जौन है ओकर से घलो सुघर लाभ ला पाते। गोठ बात करबो संगवारी हो फिर आवाओ संदेशा घलो की गोठ बात ला सुन लेथन।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हाँ तो संगवारी हो, देखो सुघर संदेशा सुने न, गोठ बात हमार रहित के राष्ट्रीय आजीविका मिशन से हमन ला बड़े लाभ होते। संगवारी हो, भारत सरकार द्वारा बढ़िया से ये योजना ला चलाए जाते, जेकर ले गांव के मनखे मन स्वयं सहायता समूह बनावाए, जेमा 10 ले 15 महिला मन समूह बना के बढ़िया ले अपन जउन हवा बचत करे के और ऋण के सुविधा एम देहे जाते, ओला बढ़िया ले आर्थिक स्थिति ला सुधारे, ये चीज बर बढ़िया आजीविका मिशन ला चलाए जाते संगवारी हो। एकर ले हमन बात करबो तो कौशल विकास हवा ऊ हर बढ़िया ओमा लाभ मिलते, काबर के युवा मन ला प्रशिक्षण देहे जाते, जेकर ले संगवारी मन सिलाई हवा डेयरी के काम बूता है, अचार बनाए के है कि दुकान छोटा मोटा, ओमा अपन आत्मनिर्भर बन के रोजी रोटी ल बढ़िया ले पा सकत है। और आजकल देखत हन संगवारी हो, कतको महिला मन बढ़िया सिलाई के काम बूता घलो करते, जेकर ले घर के काम भी हो जाते और अपन जउन ओकर ले 2-4 पैसा आए के आए हो जाते, और एकर से जउन कौशल ले तेनहर बढ़िया सीख होकर मिलत रहती। डेयरी के बात करें तो इसने गौ पालन करत हन, तो ओकर से दूध है, दही है, आजकल हर जिनिस में देखिन तो शादी बर बिहाव रहे कि कोनो भी उत्सव रहे, ओमे दूध के मांग रही थे, दही के मांग रही थे, तो पनीर के मांग रही थे, ये सब मा एहर काम आते संगवारी हो। और अचार के बात करें तो आमा के जौन बेरा आए है संगवारी हो, तो आमा लग घलाओ हमन अब्बड़ कन ला के बढ़िया ले ओला अचार बना के अपन जो जौन आजीविका है ओकर साधन ला हमन बढ़िया ले पा सकत हन, 2-4 पैसा बर रोजी रोटी जौन है रोजगार के साधन है ओहला बढ़िया ले हमन पा सकत हन, छोट मोट दुकान है ओहला हमन खोल के संगवारी हो आत्मनिर्भर बन सकत हन, और एकर ले जौन ग्रामीण महिला मन ते मन स्वरोजगार बर सशक्त घलो बनही। बीपीएल परिवार हवाए तो ओहला हमन जोड़े एमा जोड़े जाते, स्वयं सहायता में जुड़ के आजीविका के साधन और कृषि हवाए खेती किसानी पशुपालन में जम्मो हवाए तेनहर आय हर बढ़त रहते। संगवारी होकर से का होते दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम ले युवा मन ला बढ़िया प्रशिक्षण दे जाते, जेकर ले ओकर रोजगार हर बढ़िया मिले। संगठन और समृद्धि के मा अब बड़े ज्यादा बात रही थे संगवारी हो, ग्रामीण महिला मन के जौन हवा ते मन बढ़िया एमा जुड़े, और अभियान के उद्देश्य यही रही थे कि जम्मू

पात्र महिला मन ला स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। ड्रोन दीदी के घलो बात आते देखो महिला मन आजकल के बढ़िया खेती किसानी के अपन काम बूता में आगू बढ़त जाते। महिला किसान मन ला प्रशिक्षण देहे जाते संगवारी हो, जेकर ले महिला किसान मन ड्रोन दीदी के रूप में बढ़िया काम करते। जेकर ले दवाई खेती किसानी में जौन दवाई पानी लगते ना वो ड्रोन के माध्यम से अब बड़ जल्दी हो जाते और कम बेरा लगते है मकई देवा फसल बर बढ़िया ले रही थे तो हमार फसल भी सुरक्षित रही थे की देवा। संगवारी हो बात करबो तो एकर ले सामाजिक आर्थिक रूप से जौन वंचित परिवार हवा जेमन ये कोनो काम बुता नहीं करत हवा तो उहू मन बढ़िया एमा जुड़ सकत है। महिला मुखिया मन और जेकर पास जौन भूमि नहीं हवा भूया नहीं है तो अब कामा ले फसल उगाओ इसे कह के सोचते तो उहू मन एमा बढ़िया से जुड़ सकत है और स्वयं सहायता समूह में समावेशन करके बढ़िया अपन लाभ ले सकत है। संगवारी हो गोठ बात करबो तो देखाओ एकर से गांव में रोजगार के नवा रद्दा हर बनथे। मनखे मन आघू आते और खुद के छोटे व्यवसाय ला शुरू कर सकते। बैंक ले मना आसानी से ऋण दे जाते। लोगन मन के बचत करे के जौन आदत हवे तेन हर बढ़िया ले बनत रहते। जेकर ले दुद्दी पैसा बूंद बूंद कई के घड़ा भरते कहते ना तो दुद्दी पैसा बचा के ये आदत हर लग जाते तो एक दिन वही पैसा हर बहुत कन होते और बढ़िया युवा मन ला जो उन काम सीखे के ट्रेनिंग आए ओकर से इमा लाभ मिलते तो ये बढ़िया रहते। संगवारी हो गोठ बात करबो स्वरोजगार के तो हमन बात करे हन दुग्ध उत्पादन में छोटे मोटे मुर्गी पालन हवाए के अपन हाथ ले आनी बानी की जिनिस बनाते। पहली देखन तो बहरी सिरकी ये सब बढ़िया ले बनाए संगवारी हो जेकर अब बड़े सुघर दाम रहे और ओमा हस्तशिल्प जौन है तेला बढ़िया से प्रोत्साहन मिले तो आजकल तो हर जगह में हमन दुकान में देखथन तो बहरी से लेकर बड़े बड़े जिनिस बढ़िया ले मिल जाते जौन हाथ के बनाए वाला रहते। संगवारी हो तो ये मिशन के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अही जौन उद्देश्य हवे के गरीब मन बढ़िया ले एकर लाभ लेवाए गरीब परिवार मन संगठित होवे रोजगार के अवसर ला बढ़ाना हवे और सामुदायिक जौन भागीदारी है तेन हर बढ़िया ले होवे कौशल विकास योजना जौन हवे ओकर लाभ ला लेवाए और महिला मन सशक्त बने तो ये उद्देश्य कर ही संगवारी हो तो आपो मन आगू आवाओ और बढ़िया एकर फायदा ला पावाओ और हमू मन आप मन बर बढ़िया जानकारी देबो किसानवाड़ी में तो चलो चलत हन।

संगवारी हो देखो बढ़िया हमन गोठ बात करत रहें के आए हन तो सिटीर सिटीर पानी हर गिरे लागी से हवा गर्रा हर करे लागी से के और एकर से बचाव करना जरूरी होते वैसने हमर फसल मा रोग राई के बचाव करना जरूरी होते। फसल मा रोग बीमारी हर आते तो फफूंद है बैक्टीरिया है वायरस है कीड़वा मकोड़ा है एकर से तीर आते संगवारी हो तो ये बात के हमन ला चेत रखना हवय। जैसे हमन ला बुखार आ जाते वैसने पौधा मन ला घलो रोग बीमारी लग जाते ओकर निदान हमन बढ़िया ले करथन उपचार करथन तो और हमन बात करें तो एमा बीजा उपचार के बड़े महात्म रहते। हमन खाना खाए ले पहले हाथ धोथन वैसने बीजा बुवाई करे ले पहले ना बीजा ला धोए जाते उपचारित करे जाते तो एकर जेकर ले ओहर सफा हो जाते संगवारी हो और रोग बीमारी हर सुरुएच ले नहीं लगे फसल हर बढ़िया होते ओकर जौन उपज है तेन हर बढ़िया रही थे। आओ बात आते कि जौन फसल हवा में रोग बीमारी ले कैसे दूरिया करें तो एकर बार फसल चक्र अपनाए के जौन काम बुता है ओला करेला लगते संगवारी हो कहूँ रोजेच एक ठन हमन खाना ला खात रही बुहा ना आलू साकते ऐसे कही था।

0: तो उसने ना शरीर है कमजोर हो जाते, तो उसने भूइया घलाव हर रही थे जमीन हर, तो कमजोर हा होए लागते, तेकर सेतिर हमन ला ना ओमा बदल बदल के फसल ला लेना हवे, जेकर ले माटी के उर्वरा शक्ति हर बने रही थे, माटी में रोग बीमारी कम होते। संगवारी हो, खातू माटी के घलाव चेत रखना है, बढ़िया पोषक तत्व वाला भात साग खाथन वैसने जी हेमा बढ़िया से हमन खातू माटी के और उर्वरक के प्रबंधन करके फसल ल देथन तो बढ़िया रही, और कहो मनमाना यूरिया ल डाल देथन तो पौधा का है कमजोर होए लगते। तो चेत रखना है पौधा हर मजबूत रहे तो ओकर से रोग राई हर कम हुई। संगवारी हो रोग ग्रस्त पौधा जौन है तो उहू ल हमन हटा दिहीन तो बढ़िया रही। अब बीमारहा पौधा हवे तेल तुरते अलग कर दे तो हमर जौन बढ़िया सुरक्षित पौधा हवे तेन हर सुघर रही। जैसे बीमार मनखे मन रहते तो ओला हमन घर की कुरिया में अलग रखे रहथन, जेकर ले आओ बीमारी जौन है तेन हर फैले मत पाए दूसर मनखे ला घर के। तो इसने फसल घलाव बर ये चेतला रखना जरूरी रहते, जेकर ले बाकी फसल जौन है तेन हर बढ़िया सुरक्षित रहे। बेरा बेरा में सिंचाई और पानी निकासी के जौन व्यवस्था है तेन हर उचित रहे तो बने रहते। अब अभी पानी हर गिर गए तो यह फसल बर लाभदायक रही कि हानिकारक रही, ये जम्मो जिनिस ल जान के हमन ल न ज्यादा पानी के न ज्यादा कम होवे न ज्यादा पानी लगे ये चेत रख के कौन फसल बर हमन लगाए हन तो उचित रही एला हमन ल चेत करे बर लगते। संगवारी हो, घर में हमन को पानी ज्यादा भर गए तो का हो जाते, गंदगी होए लागते, मंगसा हर बाढ़े लागते। ओइसने चे खेत में कहूँ पानी ज्यादा भर गए ना तो रोग राई हर पौधा ल स्वस्थ पौधा ल नुकसान करे लगते, जड़ई सड़न रोग कीथन तो एकरे से तीर होते हर। तो संगवारी हो, ये सम जम्मो के हमन ला चेत रखना हवे और आवश्यकता होए हमन कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके जौन दवाई पानी है तेकर उपयोग करथन। हमन डॉक्टर नंग जाथन तो दवाई पानी देते ना तो ओकर नंग पूछे बगैर कहाँ खाथन। वैसने फसल में घलाव डॉक्टर के आवश्यकता होते, जेकर डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक आए तो उनकर मन से पूछ के सही मात्रा और सही बेरा में ये जौन दवाई है वाला देना है कि मन बताते, जेकर ले हमार फसल बर बढ़िया उपयोगी रही थे। जैविक नियंत्रण में घलाव चेत रखे बर पढ़े संगवारी हो, नीम के घोल हवा गौमूत्र है ट्राइकोडर्मा है, ये जम्मो हर बढ़िया रही थे, कम खर्चा में सुघर मिल जाते हर, पर्यावरण घलाव लन कम नुकसान होते, सुरक्षित रही थे। तो ये तो गोठ बात हो के फसल में हमन रोग राई के जौन प्रबंधन आए नियंत्रण आए वाला कैसे करीन के। और संगवारी हो, आज आप मन बर बढ़िया जिनिस लेके आए हवन सूक्ष्म सिंचाई के महत्व के बारे में। उद्यानिकी फसल हवे तेमा एकर बड़े महात्म रही थे संगवारी हो, सूक्ष्म सिंचाई का ये एला बतात हवे श्रीमती प्रियंका सिंगर जी मन, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हो आप मन, शासकीय उद्यान रोपड़ी चारपारा विकास खंड बलौदा और जिला जांजगीर चांपा आते संगवारी हो। भेंट करता महंगू भैया मन बढ़िया से गोठियाए हवे, इनकर गोठ बातला हमन और आप मन सुनिन और गुनिन।
1: किसान भाई हो, उद्यान की फसल में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे श्रीमती प्रियंका सिंह सेंगर जी मन, जौन हवे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी चारपारा विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा में। सबले पहले तो स्वागत कर लेथन श्रीमती प्रियंका सेंगर जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे, आप मन ला राम राम।
2: राम राम मंगू भैया।
1: सबले पहले जानना ये चाहतन कि जैसे सूक्ष्म सिंचाई की बात करबो तो ये सूक्ष्म सिंचाई होते का तेला पहली हमारे किसान भाई मन बता देवा आप मन।
2: ये जो है किसान भाई मन पर जो है आधुनिक और नवीन तकनीक है, ठीक है, जेकर अंतर्गत हमन पौधा ला डायरेक्ट मतलब सीधा ओकर जड़ मा पानी ला देथन। का है कि पानी और पोषक तत्व दोनों कम समय मा और सही मतलब मात्रा मा नियंत्रित मात्रा जे लगी थे, ठीक है ना, ज्यादा ना कम, ये हिसाब से पौधे ला निश्चित अनुपात में दिए जाते।
1: अच्छा,
2: तो एकर परिचय इसी तरह से दिए जाते कि पर पौधा मा मतलब ओकर जड़ के नीचे मतलब डायरेक्ट पानी देना, यह डायरेक्ट ओकर जड़ मा जाके गिरते, मतलब पानी के जो खपत है वह कम हो रही थी मा, और सही मात्रा मा नियंत्रित और निश्चित अनुपात मा जाते, एक नियंत्रित अनुपात मा जाते और पानी के हमार बचत होते, इस प्रकार के इला टपक सिंचाई भी कहे जाते।
1: अच्छा, ये खोज कहाँ ले करी गई सो है, ये काबर जरूरी हो, इस आवश्यकता काबर पड़ी, इहुल बता देव आप।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछे है मंगू भैया, काबर की ये बात जो है जानना जरूरी है कि एकर जरूरत काबर पड़ी और कहाँ से आईस,

0: और भारत में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि एकर जो है खोज जो है इजराइल देश से आए है हा? और हमर जो भारत में आई से 1960 के दशक में आई से,
1: अच्छा
0: है ना, तमिलनाडु से शुरू करे गए है हमारे भारत में। ओकर बाद अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुयात मात्रा में कर सिंचाई के मतलब पानी के अभाव ला देखत हुए किसान मन जागरूक हो गए हैं और अपन खेत में लगात खिला है।
1: अच्छा अच्छा ये जो सूक्ष्म सिंचाई के बात करते छन हमन, तो खास करके जैसन कि आज के विषय घला हवे उद्यान की फसल में, सब्जी वाला फसल में, कौन कौन से फसल में कर उपयोग कर जाते?
0: तो उद्यान की फसल में जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपला कि नींबू हो गए, आम हो गए, लीची हो गए, अमरूद हो गए, कटहल हो गए, ठीक है, और ये तब सब जितका भी फल वाला पौधा हो गया, ठीक है, एमा उपयोग करे जाते। तो पहले तो मैं आम के बताहा, तो आम में जो है टपक सिंचाई में 50-60% तक के पानी के बचत देखे गए हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: भाई, जो हमन फ्लड मेथड से करथन जैसे पानी छोड़ के डायरेक्ट सरफेस मेथड से जैसे पानी डाल देन नाली से नाली ऐसा करके, तो हमें बहुत ज्यादा पानी की खपत होती, क्योंकि 10-10 मीटर की दूरी में लगे रही थे, ठीक है, तो 10-10 मीटर की दूरी में लगे है, तो सोचा कतका मतलब पानी की खपत होई।
1: का एला सब्जी उत्पादन खातिर घला उपयोग करे जा सकत है?
0: बिल्कुल,
1: कैसे ढंग ले करे जाए बताओ।
0: मतलब जैसे कि पत्ता गोभी हो गए, फूल गोभी हो गए, बैगन हो गए, ग्राफ्टेड बैगन, ठीक है, टमाटर हो गए, ये सब फसल में भी देखे गए लगात ड्रिप के, और काफी मतलब मुनाफा किसान भाई मन कमाते।
1: ये तो सब्जी बताया अपन, का फूल के खेती घला करे जा सकत हवे?
0: बिल्कुल, अगर फूल की बात करबो तो फूल में भी जैसे कि गेंदा हो गए, गुलाब हो गए, तो ओहू मल भी लगाते हैं।
1: अच्छा
0: मतलब एक बार लगाओ फुर्सत पाए वाला सिस्टम है यहाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तब उद्यान की फसलों में कुल मिला के मतलब सभी फसल में,
1: अच्छा,
0: 95% में मतलब फसलों में ड्रिप मतलब उपयोग देखे गए हैं।
1: अच्छा, ये तो बताया अपन उद्यान की फसल सब्जी और फूल की खेती पर एकर उपयोग कर जा सकत हवे। ये जो सूक्ष्म सिंचाई की हम बात करत हन, जैसे ये कैसे प्रकार के होते तेला बतावा, थोड़ा विस्तार ले बताहा, ये विधि ला कैसे कैसे उपयोग कर जाते?
0: सूक्ष्म सिंचाई मुख्यतः दो प्रकार के होते, पहले टपक सिंचाई होते और दूसरा फवारा विधि जिला हमन कृत्रिम सिंचाई के नाम से भी जानथन।
1: अच्छा,
0: तो टपक सिंचाई जो होते वहा सीधा पौधा के जड़ में जाते है ना, तो जैसे कि पौधा के सता जो भी पौधा लगाए जैसे कि फल हो गए, फूल हो गए, सब्जी वाला हो गए, तो एक निश्चित अनुपात की दूरी में ओला फिट करके ओकर जड़ों में डायरेक्ट खाद दवा पानी जो है दिए जाते। और दूसरा हमन फवारा विधि की बात करबो तो नामे से स्पष्ट है, पानी जैसे पौधा ला महसूस होते।
1: अच्छा,
0: है ना, जिला कृत्रिम वर्षा बताए गए हूँ ओकरे स्वरूप है, तो एक निश्चित प्रेशर में,
1: अच्छा,
0: नोजल से उचित दूरी रही, मतलब नोजल के द्वारा पानी जो है हवा में फेंके जाते है,
1: हाँ हाँ
0: है ना, तो उबड़ खाबड़ जमीन के लिए बेस्ट रही थी।
1: अच्छा अच्छा,
0: फवारा विधि जो है, लेकिन अगर ड्रिप है समतल जमीन के लिए ठीक रही थी।
1: अच्छा अच्छा, ये दोनों विधि तो बताई दी आप मन, एकर फायदा ला बता देता, ये सिंचाई के अलावा और का का फायदा है और एकर लगाए ले का फायदा है, ये बतावा अपन।
0: बिल्कुल, सिंचाई से फायदा तो मैं आपला बता, क्योंकि पहली तो हमारे जैसे भी बागवानी फसल में मेन रूप से खरपतवार की समस्या देखे गए है, दूसरा और पानी के कमी के कारण भी ये अपनाए गए है। तब पहली तो मैं बताऊं कि यह एक बार हमारे लगाएं और सही देख रेख करें तो 10-15 साल के लिए फुर्सत हो जाती कोई भी फसल में। और का है कि देखिए जैसे कि उबड़ खाबड़ जमीन है तो फवारा विधि किसान लगाए समझ सलाह दिए जाते, और समतल जमीन है तो सूक्ष्म मतलब टपक सिंचाई लगाए सलाह दिए जाते, तो एमा जो है दोनों विधि से ही फायदा है हमन ला।
1: अच्छा,
0: ठीक है, किसान ला कहीं भटकना नहीं है, 70-80% मतलब पानी की हमन ला बचत देखे गए है।
1: अच्छा,
0: ये तो हो गए हमारे दो सिंचाई। अब फर्टिगेशन कैसे करना है, फर्टिगेशन मतलब का है, तो फर्टिगेशन मतलब का होते उर्वरक जो भी खाद हमन ला डालना है, ठीक है, और सिंचाई मतलब पानी दोनों ला मिक्स करके,
1: अच्छा,
0: ठीक है, पौधा के जड़ तक पहुंचाए जाते हैं, पौधा के जरूरत के अनुसार से हमन खाद है दवा समय में डाल के मतलब ड्रिपर के माध्यम से वहां पहुंचते।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो वो जो है मेन वाल्व में लगे रही थी, ठीक है, तो मेन वाल्व में लगे रही थे जेकर हिसाब से हमन पूरा जैसे कोई मैं टानिक 2-4 ठक बता देता हूँ।
1: अच्छा,
0: ठीक है, टानिक जैसे कि हमन डालबो, पहला हो गया मैं बताना चाहूँ आपला ऑर्गेनिक प्लांट बूस्टर करके, और ओकर बाद फिर मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट करके आते, फिर ऑल प्लांट ग्रोथ करके एक टा निकाथे।
1: अच्छा।

0: वेजिटेबल फर्टिलाइजर जो जो मां नाइट्रोजन होते, फास्फोरस होते, पोटास होते, सल्फर टॉनिक होते, ग्रोथ बूस्ट करके, मतलब फल के लिए अलग टॉनिक आई, ठीक है, और सब्जी के लिए अलग आई, और फूल के लिए अलग आई,
1: अच्छा,
0: अलग अलग फसल के लिए अलग अलग टॉनिक के मतलब है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: ऑर्गेनिक डालिया तो ज़्यादा मतलब होकर
1: अच्छा अच्छा
0: ग्रोथ हुई और मतलब अच्छे से ओकर प्रोडक्शन हुई और किसान भाई मतलब ज़्यादा लाभ हुई।
1: कहे का मतलब है कि सिंचाई के अलावा ये है तो पानी के बचत करबेज करते, दूसरा ये है कि एमा दवाई घला पानी के संग संग में दवाई घला एकर दे जा
0: हाँ,
1: सका
0: तो
1: था।
0: वेंचरी सिस्टम के माध्यम से हम डालते ना, जैसे कि आप लोग बताए हो, तो वो मेन पाइप से लगे रहे थे वेंचरी सिस्टम। तो जैसे कि कोई भी फसल हम लेबो तो वेंचुरी सिस्टम में मतलब ओला नाप के, जैसे 2 ml देना है
1: अच्छा
0: तो ओला पानी मिला के वेंचुरी सिस्टम मेन
1: बढ़िया।
0: पाइपलाइन में लगे रहते, तो ओला हमन मिला के वही में डाल देते हैं
1: अच्छा
0: ताकि एक निश्चित मात्रा में वो घुल के और जड़ तक पहुंच जाए,
1: अच्छा
0: ऐला
1: अच्छा
0: फर्टिगेशन कहते हैं। और एक बहुत मुख्य बात ये है कि खरपतवार जो है मतलब फसलों के कंपटीटर होते, मतलब ओकर उत्पादन लग कम करते।
1: अच्छा
0: जो भी अगर हम नॉर्मल तरीके से सिंचाई करबो कोई भी फसल में उद्यान की माँ, तो ओकर जितका पोषक तत्व तो होते, न्यूट्रिशन होते, हम जो भी वो दवा खाद डालबो खरपतवार लेक जाते,
1: अच्छा
0: तो ओकर बढ़वार हम देखते हैं तब मेन फसल ले ज्यादा हो जाते।
1: अच्छा
0: तो ए विधि में का है कि मतलब सिर्फ मुख्य रूप से पौधे ले ही टारगेट करके जाते
1: हाँ
0: है ना। और दूसरी बात, उबड़ खाबड़ जमीन में तो ओहू में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ओहू में लगा के मतलब हर प्रकार से मतलब कहीं भी दोनों विधि अपना के हम किसी भी जमीन में खेती कर सकते हैं।
1: ये तो 3 फायदा बताया, पानी की बचत, पौधे ला मिलते पानी है, और दूसरा फायदा बताया कि दवाई पानी वही माँ दे जा सका था। तीसरा फायदा ये बतावा कि उत्पादन में कतेक फर्क पड़ जात हुई।
0: बिल्कुल, उत्पादन में तो बहुत फायदा देखे गए हैं। जैसे कि अब हॉर्टिकल्चर में जैसे कि आम की बात करिए, प्रति पौधा 100 से 300 मतलब केजी के उत्पादन देखे गए
1: अच्छा
0: हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: और ग्राफ्टेड बैगन में मतलब एक पौधा में 8 से 10 किलो
1: अच्छा अंतर
0: उत्पादन, जैसे कि वो सिंचाई के असर से, क्योंकि अब ओकर डायरेक्ट खातू दवा माटी मिला थे, दवा मिला थे, तो वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे थे भाई, शरीर में मतलब ओकर ज्यादा ज्यादा इफेक्ट हुआ थे ओकर पौधा में।
1: अच्छा।
0: तो उत्पादन में काफी हद तक वृद्धि देखे गए है, और श्रम के भी बचत होते हैं, हमला लेबर मजदूर मतलब नहीं लगाए पर
1: हाँ
0: है ना।
1: बहुत बढ़िया
0: और
1: बताया।
0: वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ओला हम मतलब नियंत्रित कर दें एक बार,
1: हाँ
0: ओकर बाद हमला देख रेख करे की जरूरत पड़ते जी।
1: समय की बचत।
0: हाँ, समय की बचत होते, समय की बचत हो गए, श्रम के बचत हो गए, ये सब होते।
1: मतलब एक फायदा बहुत है, इला देखा तो हमारे किसान भाई मेरा लगाना चाहिए इला। अब ये बतावा फायदा तो बता दे अपन, इमें समस्या का कहाँ थे तो कम बतावा ना, जैसे
0: बिल्कुल,
1: कचरा फंस जात हो, ये का देख रेख करना पड़ी हमारे किसान भाई मतलब अगर एक उपयोग करते हैं तो।
0: मेन जैसे कि पाइप में ड्रिपर में ही मेन दिक्कत होते कि जैसे कि कुछ तो पानी में मतलब देखता के मतलब छान साफ सुथरा डालना चाहिए, फिल्टर के उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ड्रिपर में जैसे छोटे छोटे पौधे हम लगाए रहते हैं तो ड्रिपर ला समय समय में ओकर पिन से हम थोड़ा सा मतलब ओला पिन से ऐसे करके होल लगकर साफ करता हूँ
1: अच्छा
0: ताकि वो सुरक्षित रहे। और पाइप ला देख, वैसे भी अल्ट्रा ट्रीटेड, आजकल अल्ट्रा ट्रीटेड पाइप आ गए हैं तो उसका देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ा है,
1: अच्छा
0: लेकिन समय समय में जैसे कि वो तो विजिट करे सब, जैसे फील्ड हमन जाथन देख
1: हाँ
0: के ही पता चल जाते कि कैसे पानी नहीं गिरा थे, कहाँ है, कहाँ पस नोजर में कहाँ फंसे,
1: अच्छा
0: देख रेख करके अपन ओला सही उचित देखभाल करके मतलब ओकर लाइफ ला बढ़ाया जा सकते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अब आखिर बता कि ये अगर उपयोग करत है हमारे किसान भाई मन सूक्ष्म सिंचाई के, जितका भी बताया टपक सिंचाई और 12 विधि के, तो कई साल भर हमारे कई बच्चर भर हमारे किसान बहन फुर्सत हो जाही अगर बढ़िया ढंग देख रेख करते हुए तो, और का देख रेख करे खातिर कोनो औ एकर बर आत हुई का बताए खातिर इहल बताहा अपन।
0: बिल्कुल, जैसे कि हम एक बार अगर ड्रिप सिस्टम लगा दें ठीक है, तो 10 से 15 साल देखेल नहीं पड़े। और जैसे देखरेख की बात करें हैं तो कंपनी वाले जैसे आते हैं, जो भी अपन किसान भाई मन चाहिए अपन कंपनी सेलेक्ट खुद करके ओला लगवाते,
1: अच्छा
0: तो ओमन देख रेख करे आते, कोई भी समस्या होते तो
1: बताते हैं।
0: बताते हैं
1: अच्छा
0: कि
1: अच्छा
0: का कमी है का बेसी है करके, किसान भाई ला समय समय में जानकारी ओमन देते।
1: बहुत अच्छा विषय रही सब है। अगर हमारे किसान भाई मन आपके बताए इस हिसाब में कहूँ एकर उपयोग करना चाहिए सूक्ष्म सिंचाई के, तो कहाँ संपर्क करें और एकर बर कतेक अनुदान मिल सकत हवे हमारे किसान भाई मल्ला।
0: बिल्कुल, जैसे कि मैं बताहा कि लघु और सीमांत जो कृषक है, लघु और सीमांत किसान 55% के

0: छूट है सरकार के द्वारा, और दीर्घ जो है जैसे कि 5 एकड़ से ऊपर जो भी किसान है ना, उनके लिए मतलब 45% मतलब कम छूट है उनके। अब
1: अच्छा।
0: बड़े किसान हैं तो उन पर सरकार द्वारा थोड़ा 45% की छूट दिए गए है,
1: मतलब कहे जाए तो अनुदान खल है,
0: तो अनुदान है
1: हमारे किसान भाई मले कर
0: बिल्कुल
1: लाभ
0: मिल सकता है
1: उठाना चाहिए और संपर्क करना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: उद्यान विभाग ले। बहुत अच्छा विषय रही सवे, आज के विषय रही सवे उद्यान की फसल में सूक्ष्म सिंचाई के महत्व। ये विषय में अपन बहुत बढ़िया जानकारी दे हमारे स्टूडियो में आए एक बार श्रीमती प्रियंका सिंह सेंगर जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद महंगू भैया।
2: बिकट बढ़िया जानकारी बताई से संगवारी हो आज के जौन विषय में के उद्यानिकी फसल में सूक्ष्म सिंचाई के का महात्म हवय, ये बढ़िया जानकारी ल बतात रही श्रीमती प्रियंका सिंह सेंगर जी मन, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हो आप मन। शासकीय उद्यान रोपड़ी चारपारा विकास खंड बलौदा मा जिला जांजगीर चापा मा थे संगवारी हो, और महंगो भैया मन बढ़िया से गोठियाईस हवय और आवाओ फिर सुनथन बढ़िया संदेश ल।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: हाँ तो देखो संगवारी हो, बढ़िया संदेशा सुने ना, वो भात साग खाए के बेरा होत हवे ऐसे लगत हवे। तो अगोरा रही थे है ना, चटनी के बढ़िया सेवाद रहे इसे की के। तो वैसने हम आप मन अगोरा थोड़ा संगवारी हो गुत्तुर गीत सुनाए के। तो बढ़िया आप मन बर हमन गीत लेके आए हवन, जेला सुन के मन हर बढ़िया लगे लागी। तो आज की जो गीत हवे उमा साधना यादव जी और कविता हिरकने जी मन के बढ़िया स्वर हवे। तो आवाज सुनाथन ये गीत लगा।

देखो संगवारी हो, कतना गुत्तूर गीत ल सुनेन, बाबा अउ दादा जमाना के गीते, साधना यादव अउ कविता हिरकने जी मन के मधुर स्वर में बढ़िया ये गीत ल सुनेन संगवारी हो। अउ हमन गोठ बात करबो कि आज की जौन कृषि संबंधित खेती किसानी करथन, फसल लेथन, तो ओकर संबंधित कृषि वैज्ञानिक मन बढ़िया से सलाह दी रही थी, जेकर से हमन अपन खेती बाड़ी के जौन काम बूता होला बढ़िया ढंग ले करीन कहीं के। तो संगवारी हो, अभी के बेरा में देखा किसान भाई मन ला ऐसे सलाह दे जाती कि खरीफ फसल के तैयारी बरना माटी में जौन नमी है कि भूइया की जोताई है, वो काम बूता ला कर लेन तो बढ़िया रही थी। वर्तमान बेरा में किसान भाई मन अपन खेती के जौन माटी हवे ओकर जाँच ला करा लेवे तो आउ सुघर रही थे। ये काम बूता बर विभागीय कृषि अधिकारी होते और जिला के अपन कृषि विज्ञान केंद्र रहते, वहां जाके संपर्क करथन ना तो बढ़िया ले बताते। संगवारी हो, फल उद्यान है, बगीचा वाला लगाए के कहूँ इच्छुक किसान भाई मन है तो एक गुड़ित एक मीटर के हमन बढ़िया गड्ढा ला तैयार कर लिहिन और वाला खाम घाम में खुला जौन धूप है वहाँ छोड़ देथन ना तो उपचारित हो जाते। ओकर बाद हमन लगाथन तो जौन फर हवे ओकर किसम, जैसे आमा के किसम दशहरी आमा है, लंगड़ा आमा है, छत्तीसगढ़ नंदीराज है, ऐसने बिही के किसम है इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ उनचास, इनकर चयन करके हमन पौधा लगाए के व्यवस्था करथन तो अब्बड़ सुघर रीते इसे की थे। संगवारी हो, इसने आओ गन्ना हमन लगाए हवन तो ओमा कल्ला बने के अवस्था हो गए हवे, तो एमा ना जौन कुसियार है तेन हर माड़ी भर के ऊंचा हो गए है, तो चेत रखना है कि निंदाई गुड़ाई के काम बूता करे के बाद जौन नाइट्रोजन के बाँचे वाला मात्रा रीते आधा हिस्सा ओला डाल के माटी ला चढ़ा लेथन ना, ओकर बाद सिंचाई के काम बूता अपनाथन तो बनी रही। संगवारी हो, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अवैया दिन में तापमान हर बाढ़े के संभावना हवे, चेत रखियो जी कि गर्मी के बेरा में जौन दलहन तिलहन है ओकर बढ़िया लगातार निगरानी करत रहें, नहीं तो एमा जौन दुश्मन हवे हमार पौधा मन के फसल के मोजेक रोग ये हराए लगते, जेकर बर कीटनाशक दवाई के उपयोग करना है तो चेत रखे बर पड़ते। संगवारी हो, देखो गोठ बात करत करत बेरा हर हुआ थे बिदल है के, तो हम ही केवो बढ़िया से अपन फसल के गाय गरुआ पालन करथन ओकर चेत रखीन, चार पांच पैत हमन ताजा पानी पिलाइन, इसे करके जौन पशुपालन करथन ओकरो व्यवस्था बढ़िया ले हो जाते। और आओ गोठ बात हमन करबो संगवारी हो आगू के कार्यक्रम में, फिर अब बिदल है कि बेरा हुआ थे तो वही कही थन, जैसे किसान तय लेहे देहे वैसे झोक आशीष जी, अन्न धन से तुम्हार घर भरे, जुग जियो लाख बरिस जी। एकरे संग किसानवाड़ी कार्यक्रम ले देवो विदा, नंदू भैया की झुकाओ, जय जोहार, राम राम।

नंदू भैया के साथ हम थे किसान वाणी कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार हैं गुलाम अली।

दर्शन सिंह की रचना थी, आवाज गुलाम अली साहब की। सुगम संगीत में हम सुन रहे हैं गुलाम अली को। आइए अब सुने मदन पाल जी की रचना, स्वर वही हमारा आपका जाना पहचाना, गुलाम अली साहब।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हमने सुना आज गुलाम अली को। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, रात्रि के 8:15। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

जी हाँ, आज उनके सफर की बात जो शब्दों की जादूगर है। हिंदुस्तान की फिल्में बिना गीत संगीत के तो हो ही नहीं सकती। दुनिया में बॉलीवुड ऐसा क्षेत्र है जिसमें गीतकार संगीतकार का अपना अलग स्थान है। कहानी को आगे बढ़ाना और कहानी में तरलता प्रदान करना गीतों का काम है। हिंदी फिल्मों को अपने गीतों से कई गीतकारों ने समृद्ध किया है। गुलजार उनमें से बड़ी प्रमुखता से याद किए जाते हैं। गुलजार साहब के बहुत लंबे सफर के सिर्फ कुछ हिस्से आज इस कार्यक्रम में, उनके अनवरत सफर का ये एक हिस्सा है।

गुलजार साहब की लेखनी चलती जा रही है, शब्दों का जादूगर संपूर्ण से ही कालरा, जी हाँ यही उनका नाम है, और अपने शब्दों की रोशनी के साथ गुलजार नाम से जाने गए। सिर्फ गीतकार ही नहीं, कहानीकार, निर्माता, निर्देशक, सब कुछ थे गुलजार साहब। अपनी सफेद पोशाक के साथ भावनाओं की रंगीनियत और उसकी नरमी हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से गुलजार साहब लगातार दे रहे हैं, और इस दौर में भी गुलजार साहब लगातार फिल्मी दुनिया को समृद्ध कर रहे हैं। उनके शब्दों के चयन, उनके शब्द बंद, नए नए आयाम, नए नए सिंबॉलिज्म के साथ वे नई नई चीजें गढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी ही बनाई फिल्म इजाजत का ये गीत सुनिए।

सत्या का कल्लू मामा वाला गीत, ओमकारा का बीड़ी जलैले, प्रचलित शब्दों में हम उन्हें डांस नंबर कह देते हैं, पर गुलजार साहब उन शब्दों के बीच बहुत कुछ छोड़ जाते हैं हमारे लिए, जो पूरी कहानी है। ज्यादातर लोग प्रेम को मिठास से तुलना करते हैं, वहीं गुलजार प्रेम को नमक से जाहिर करते हैं और नमक इश्क का लिखते हैं। प्रेम के पहरे पर वो कुछ ऐसा भी लिखते हैं।

गुलजार साहब की सामाजिक प्रतिबद्धता और व्यवस्था के सामने विरोध का स्वर भी उनके गीतों और फिल्मों में घुला मिला हुआ होता है। मनोरंजक ढंग से गहरी और कड़वी बात को भी वो ऐसे कह जाते हैं जैसे प्रेम गीत कह रहे हों, पर वो असर सही जगह पर करता रहा है। पढ़ाई लिखाई और बेफिक्री के बीच भी ये गीत उनका मारक है।

ऐसे ही कितने खिलंदड़ गीतों से वे अलग आनंद हिंदी फिल्मों को देते रहे हैं। वहीं भंवरे की तरह गुनगुनाते स्नेह को भी एक बड़ी जगह देते हैं। अंगूर इनकी एक बहुत ही प्रयोगात्मक फिल्म थी। डबल रोल के साथ एक सार्थक मनोरंजन वे परोस रहे थे। उनका ये गीत भी सुनिए।

0: शब्दों की पहचान और व्यक्तित्व की पहचान मुकम्मल है गुलजार साहब की। आप सुन रहे थे रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के

0: आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
3: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज C.DOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस C.DOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा

0: को सुनिश्चित करनी देश की जनता के हाथों में और एनडीआरएफ के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएस का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
2: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है, जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक एसएमएस आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है, जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के चार जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उपमुख्यमंत्री हर सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
4: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी

0: जानकारी एकत्र की जाएगी।
1: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं, इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया, ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Nearly 90% voter turnout recorded in re-polling at 15 booths of 2 assembly constituencies of West Bengal. Counting of votes on Monday for assembly polls in West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and Puducherry. Election Commission deploys additional counting observers and police observers in West Bengal. Government launches cell broadcast system to strengthen India's emergency communication systems and enhance public safety infrastructure. 4 security personnel killed in an IED blast near Kanker, Narayanpur district border in Chhattisgarh. Renowned lyricist Prasoon Joshi appointed as chairman of Prasar Bharati. And in cricket, BCCI announces Indian squad led by Harmanpreet Kaur for ICC Women's T20 World Cup. In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magraghat, Poshchim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the 2 assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase.

इंतजार के इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझकर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वहीं ठहर जाता।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। इंतजार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा है।

0: माथे रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्ला क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नजर के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेकरार है।
1: तू

शमा ने कहा परवाने से, मत पास आ जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है, जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

एक तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अश्कों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है। चोरी, चोरी।

0: छाए गीत के सफर में आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कभी इसी वादे के साथ। मंत्री वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: ढलती जाए रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अनुप्रसारित कर रहे थे। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
2: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4

0: नौजवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। In West Bengal, nearly 90% voter turnout was recorded in the re-polling held today across 15 booths in South 24 Parganas district. These include 11 booths in Magrahat Paschim constituency and 4 in Diamond Harbour seat. Repolling remained largely peaceful across the two assembly segments. The repolling was ordered by the Election Commission on the basis of reports received from the concerned returning officers and the observers. Voting on these polling stations was held on the 29th of last month in the second phase of assembly elections. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be held on Monday. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. The Election Commission has ordered re-polling in all 285 polling stations, including auxiliary polling stations in Falta Assembly Constituency of West Bengal. The Commission mentioned that there has been severe electoral offences and subversion of democratic process during the polling in a large number of polling stations in Falta Assembly Constituency on Wednesday. Fresh poll will be held in all polling stations on 21st of this month from 7 a.m. to 6 p.m. Counting of votes will take place on 24th May. The Election Commission has deployed additional counting observers and police observers in West Bengal. A total of 165 additional counting observers have been assigned to assist counting observers, while 77 police observers have been deployed to strengthen security and oversee law and order arrangements around counting centres. The Commission said these measures are aimed at ensuring that the counting process is conducted in a secure, peaceful, intimidation-free and transparent manner. However, it clarified that police observers will not enter the counting halls under any circumstances on the day of vote counting. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Jayamala Bagchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Dr. R. Balasubramaniam and Dr.